नमस्कार, एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:56 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है इस मंगल धुन के साथ।

0: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं, आइए हमारे दिल्ली केंद्र से सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में

0: खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए ले चलते हैं आपको अपने मुंबई केंद्र, जहां से लेकर 7:15 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, चिंता के समान शरीर का नाश करने वाला और कुछ नहीं है, इसलिए जिसे भी ईश्वर में जरा भी विश्वास हो उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये संसार एक माया लोक है और इस लोक में आकर स्वयं प्रभु भी रचते हैं लीलाएं, स्वयं ही हरते हैं जीव के मन से माया मोह के बंधन और करते हैं बंधन मुक्त भी, किंतु उनकी माया का रस अनोखा है।

जरा सोचिए तो कौन होगा उस प्रभु से शक्तिशाली जिनके इशारे पर नाचती है ये दुनिया सारी, उस पर भोलापन ऐसा कि प्रसन्नता से दुनियावारी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुनेंगे। आज सुनेंगे 224वां भाग। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित S.L. कंडारा। दूसरी कड़ी आज सुनेंगे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम 6:45 से। 7:00 से भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:00 से सुनिए समाचार प्रभात। 8:15 से कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष। लेखन मिलिंद सबनिश का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 8:30 से चित्रलोक और सुबह 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10:00 से सुन सकते हैं पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश का पुनः प्रसारण। 11:00 से रंग तरंग। 12:00 से हिंदी में समाचार और 12:05 से सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। 1:00 का समय है सुरीला सफर कार्यक्रम का और 2:00 से पुनः प्रसारण होगा वंदे मातरम एक जय घोष कार्यक्रम का। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 2:15 से दोपहर समाचार। 2:30 से आनंद लीजिए सदाबहार नकमे कार्यक्रम का। हेलो सहेली कार्यक्रम सुनेंगे 3:00 से। 4:00 पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज सुनिए कहानी ज्वालामुखी। कहानी का लेखन और वाचन किया है निवेदिता श्रीवास्तव निवी ने। संपादन काजल भदरगे का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:00 से छाया गीत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। 5:30 से तराने नए पुराने। 6:00 से सुनिए हिंदी में समाचार। 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने और 6:30 से झरोखा के अंतर्गत सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रम का विवरण। 6:35 से संध्या रंजन और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित S.L. कंडारा और इस कड़ी की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे। 7:00 से जय माला। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। पुरातत्व के तत्व ये झलके सुन सकते हैं 8:00 से हवा महल में। लेखन नाजनीन का, निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का।

रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 बजे से सुनिए छाया गीत। 10:30 से ढलती जाए रात। 11 बजे से कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

आपको एक बार फिर से बता दें, वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की 33वीं कड़ी आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से और दोपहर 2 बजे से। और ये कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं झरोखा के अंतर्गत, जिसमें आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आपने सुना।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थी, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है और स्वागत है जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा साहब का।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: पंडित जी, पहली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दक्षिण भारत में वॉयलिन का आगमन हुआ, ये प्रचलित हुआ वाद्य, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत की तरफ लोकप्रिय होने लगा। पहली बार उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के हाथ में ये वाद्य दिखाई दिया, आप बता रहे थे, इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे कि और किन कलाकारों ने इस वाद्य को सीख करके इसे प्रचलित करने का, इसका प्रचार करने का प्रयास किया।
2: देखिए जयंत जी, वायलिन क्लासिकल म्यूजिक में और फिल्म म्यूजिक में
1: जी,
2: दोनों में बहुत प्रचलित हुआ। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें अपन पहले, तो क्लासिकल म्यूजिक में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बाद उनके शिष्यों में से पंडित विजी जोग, गजानन राव जोशी जी जो महाराष्ट्र के
1: जी जी,
2: उन्होंने भी इस बाजे को बहुत अच्छे से देखा और संभाला और इस पे काम किया। एन राजम जी जो अभी वर्तमान में हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस बाजे पे अच्छा काम किया। दाता जी,
1: डीके दाता, हाँ,
2: ये सब लोग बजाते रहे। लेकिन जोग साहब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जोग साहब ने इस बाजे को एक्सेप्टेबल बनाया, लार्जली
1: जी
2: वाइडली एक्सेप्टेबल ये बाजा बना उनके कंट्रीब्यूशन से। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि वो सोलो वायलिन तो बजाया ही उन्होंने बहुत, लेकिन गवैयों की संगत भी उन्होंने बहुत की। उनमें कई सारे बड़े गवैये जिनके साथ वो बैठ के उनकी संगत की और इसको एक्सेप्टेबल बनाया। गवैयों के अलावा उन्होंने कई सारी जुगलबंदी बजाई, जो जुगलबंदियाँ आज भी रिकॉर्ड्स में उपलब्ध हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, अपना पंडित रामनारायण जी के साथ, मेरे गुरु जी के साथ, और भी कई लोगों के साथ। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन ये बहुत ज्यादा रहा
1: कि बहुत बड़ा योगदान है,
2: योगदान रहा
1: जी जी।
2: और उन्होंने इस बाजे का जितना अच्छा टोन प्रोड्यूस किया, एक खूबी जो उनकी, बहुत कम लोग वाकिफ हैं इससे कि जितना अच्छा ध्वनि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि
1: जी,
2: अंग्रेजी में कहते हैं टोन, टोनल क्वालिटी, उनके इंस्ट्रूमेंट में थी। वो किसी वायलिन वादक के इंस्ट्रूमेंट में इतनी अच्छी ध्वनि शायद संभव नहीं है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अभी ज्ञान कोई अंतिम ज्ञान नहीं है, तो लेकिन ये है कि ये सर्वमान्य सत्य है कि उन्होंने बहुत अच्छा टोन निकाला बाजे पर।
1: पंडित जी, यहाँ लगे हाथों एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये वाद्य पश्चिम से हमारे यहाँ आया है, तो पश्चिम में जिस तरह से ये इसका स्वरूप था, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनाने के बाद में क्या इसमें कोई बदलाव किया गया, किसी ने कोशिश की कि इस भारत के संगीत के अनुरूप ये बजे, इसके लिए कुछ प्रयास हुए होंगे निश्चित रूप से?
2: जैन जी, ये थोड़ी सी दुखद स्टोरी है
1: जी
2: कि कुछ लोगों ने प्रयास किया और वो असफल रहे इसपे
1: जी।
2: अपने आप में ये कम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है,

0: तार से ज्यादा।
1: आप पंडित जोग साहब के बारे में बता रहे थे।
0: जी, तो जोग साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और उन्होंने इस बाजे को पॉपुलर किया। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है ये, जितना साउथ इंडिया में है।
1: जी,
0: हर फंक्शन में, हर म्यूजिकल इवेंट में इस बाजे का उपयोग होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वायलिनिस्ट हुए हैं, राइट फ्रॉम चौड़ैया टू MS गोपाल कृष्णन और
1: लालगुड़ी
0: जयरामन। इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको पॉपुलराइज करने में। और भी लोग हैं
1: समकालीन कलाकारों में,
0: सुब्रमण्यम जी हैं। हाँ, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो सक्सेस मिली है वो इनकी जोग साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से।
2: पंडित वीजी जोग साहब की आप बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को उन्हीं का बजाया हुआ राग श्याम कल्याण सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल, जरूर सुनवाइए।

पंडित वीजी जोग का वायोलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण आप सुन रहे थे श्रोताओं। और आइए अब इसी राग पर आधारित एक गैर फिल्मी रचना आपको सुनवाते हैं, गायक स्वर ए हरिहरन का।

0: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

रामी धुबन फिल्म के इस गीत के साथ ही याद किया फिल्म निर्माता और संगीतकार हीरेन बोस को उनके पुण्यतिथि पर, करते हैं उन्हें नमन। और रामी धुबन फिल्म का ये गीत आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में, राम मूर्ति ने इसे लिखा, हीरेन बोस का संगीत था। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे

0: हसरत जयपुरी के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आह फिल्म के इस गीत में शंकर जयकिशन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे की।

0: डोर तू पतंग मैं
1: कट गई पतंग की डोर अब न डालिए, कट गई पतंग की डोर अब न डालिए और किसी के सामने जाके दिल बुझा लिए।
0: अरे सुन सुन।

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन।
0: जा जा।
2: आर पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, भूले बिसरे गीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। एफएम एंड पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 MHz पर। कार्यक्रमों को आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आज के शेष कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। सुबह 7:20 पर गोरखपुर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचारों के बाद 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश होगा हमारे स्टूडियो से। 8:15 पर सुरसंगम, 8:30

0: से दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में चर्चा का विषय होगा गुरु हरगोविंद सिंह जयंती, और इसी कार्यक्रम में ज्ञानी नवनीत सिंह की वार्ता सुनिएगा। विषय रहेगा गुरु हरगोविंद सिंह का जीवन दर्शन। सुबह 9 बजे से व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत का प्रसारण, और 9:30 से फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का प्रसारण किया जाएगा। दस बजकर 30 मिनट से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और 12:30 पर होगा लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। वहीं दोपहर 1 बजे से फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम कुछ तुमने कहा का प्रसारण स्टूडियो से, और दिन में 2 बजे से सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों का दैनिक कार्यक्रम गीतांजलि। दोपहर समाचार के बाद 2:30 पर कार्यक्रम अंगना के अंतर्गत संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा के अलावा योगाचार्य दीप शिखा की वार्ता सुनवाएंगे। विषय होगा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग। शाम 5 बजे से युवाणी में चर्चा का विषय रहेगा गुरु हरगोविंद सिंह जयंती। खास सेगमेंट स्थान में न्यूजीलैंड के वेलिंगटन शहर की जानकारी और शब्दावली आज के युवाणी में। शाम 5:30 से लोक संगीत, 6:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी, और 6:30 से लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वर्गाओं के। वहीं शाम 6:45 से कार्यक्रम कृषि जगत में चर्चा का विषय रहेगा समय का सदुपयोग करें, और डॉक्टर शिप्रा यादव से जानेंगे हमारे क्षेत्र में के लिए धान की उन्नत प्रजातियां और उनकी विशेषताएं। आज रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल, और 9:30 से होगा आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रम FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर, साथ ही साथ akashvani.gov.in पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी सी करें प्रतीक्षा।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है।
3: सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया, कहा किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग्स के जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक, चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदूखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
1: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ताराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही है।
1: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रोक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए, यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भर।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। वो अयोध्या नगर निगम की कुल 291 करोड़ रुपए की लागत वाली 245 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। योजना के तहत प्रदेश के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला

0: लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड UPATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े बुलंदशहर जिले से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में थे। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के सहित नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में MSME के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स SME फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और MSME के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत कल लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों का सुपोषित होना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 जून तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की भी संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज और कल, जबकि पूर्वी जिलों में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। UPATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स MSME फोरम और SME वर्किंग ग्रुप की बैठक। चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह

0: व्यक्त करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप akashvani.gov.in पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
7: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
6: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: भक्ति संगीत के कार्यक्रम अमृत कलश में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले सुनते हैं ये भक्ति रचना जसविंदर नरोला और अभिजीत की आवाज में। शब्द रचना है श्याम अनुरागी की।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम अमृत कलश में आइए सुनते हैं ये दूसरी भक्ति रचना सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। गीत लिखा है नक्श लैलपुरी ने और संगीत है सैयद अली का।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आँखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आँखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-46-46।
3: सुना थे सखी सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
4: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुना थे अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं अपनी शादी की सालगिरह जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज गढ़ेया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम

0: 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: कार्यक्रम अमृत कलश में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं भक्ति रचना सुरेश वाडकर के स्वर में। संगीत है आनंद राज आनंद का।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ।
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
0: कार्यक्रम भक्ति संगीत में अमृत कलश नाम से कार्यक्रम आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में ये आरती।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ

0: योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: पेरिस मैं इसे सातवें दौरे के लिए स्वागत करते फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड,

0: त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची, वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़क का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से FM एंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 8:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
6: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
7: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
8: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये

0: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
1: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: कार्यक्रम सुरसंगम में आप सभी का स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त सदक। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और चले आइए इस प्यारे से प्रोग्राम के साथ। सोनू निगम की आवाज है चंदा की डोली एल्बम से और शब्द रचना है नुसरत बद्र की, कंपोजर खुद सोनू निगम।

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com कार्यक्रम सुरसंगम में आपका फिर से स्वागत है। आइए इस गीत में सुनते हैं नुसरत फतेह अली खान को, शब्द रचना हसन रिजवी की।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। एफएम एंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। akashvani.gov.in पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी आप हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर

0: समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। श्रोताओं, कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त सदक। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए सबसे पहले बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ है आपके लिए। आज की बात का विषय होगा गुरु हरगोविंद सिंह जयंती। आपको शब्द सुनाएंगे और इसी कार्यक्रम में वार्ता सुनिएगा गुरु हरगोविंद सिंह का जीवन दर्शन। वार्ताकार होंगे ज्ञानी नवनीत सिंह और इनसे बातचीत करेंगी सरस्वती पाठक। कार्यक्रम में स्थानीय समाचारों की बात होगी, समाचार पत्रों से और फिल्मी गाने भी सुनवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रणाम अयोध्या के आज के सफर की। दोस्तों, आज सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी की जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने समाज को ये संदेश दिया कि आध्यात्मिकता और साहस दोनों का संतुलन ही जीवन की सच्ची शक्ति है। उन्होंने मीरी और पीरी के सिद्धांत के माध्यम से ये बताया कि धर्म के साथ साथ अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सेवा, त्याग, निडरता और मानवता के मूल्यों को अपने जीवन में उतारा और समाज को एकजुट रहने की प्रेरणा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल सत्य, न्याय और कमजोरों की रक्षा के लिए होना चाहिए। आइए गुरु हरगोविंद सिंह जी की जयंती पर उनके आदर्शों को अपनाने और प्रेम, भाईचारे तथा मानवता की सेवा पर चलने का संकल्प लें।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आपका फिर से स्वागत है। इस शब्द के बाद आइए आपको सुनवाते हैं आज इस दिवस विशेष पर यह वार्ता, जिसका विषय है गुरु गोविंद सिंह का जीवन दर्शन। वार्ताकार हैं ज्ञानी नवनीत सिंह और आपसे बातचीत कर रही हैं सरस्वती पाठक।
1: श्रोताओं, हमारे समाज और राष्ट्र के निर्माण में समय समय पर महापुरुषों का बहुत योगदान रहा है। इन महापुरुषों ने स्वयं के त्याग और बलिदान से समाज को नई दिशा दी और एक मानव मात्र को, जो साधारण मनुष्य है, उसे रास्ता दिखाया, उसे उसके कर्तव्य के बारे में ज्ञान कराया। आज ऐसे ही एक महापुरुष की हम बात करने जा रहे हैं। गुरु हरगोविंद साहब का जीवन दर्शन एक परिचय और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ज्ञानी नवनीत सिंह जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो
2: जी
1: में।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जैसा कि हमने अपने श्रोताओं से कहा कि जो महापुरुष हैं हमारे राष्ट्र को एक नई दिशा देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: हरगोविंद सिंह साहब के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन थे और किस धर्म से आपका संबंध है।
2: जी, सिख धर्म आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। 10

0: गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित करके फिर देहधारी गुरु की परंपरा का समापन कर दिया। इस कड़ी में जो 6वें गुरु हमारे गुरु हरगोविंद साहिब जी हैं, जिनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि संपूर्ण जीवन को इतने कम समय में बता पाना तो बहुत मुश्किल काम है
1: जी।
0: लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंश आप सबसे साझा करूं। गुरु हरगोविंद साहिब गुरु अर्जुन देव जी के सुपुत्र, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के पिता, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, उनके दादाजी थे। तो इतिहास में और सिख पंथ में, सिख धर्म में गुरु हरगोविंद साहिब 6वें गुरु होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत थे। गुरु हरगोविंद साहिब न केवल 6वें गुरु नानक देव जी के रूप में जाने जाते हैं, आज हमारा सिख धर्म शौर्य, साहस और युद्ध क्षेत्र में अद्वितीय प्रदर्शन करता है
1: जी।
0: तो ये भी एक नींव जो रखी गई, ये गुरु नानक देव जी से लेकर 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी तक अध्यात्म, समाज की सुधार और कुरीतियों का विरोध, इस पर ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन जब जुल्म करने वालों के जुल्म का स्तर नाक से ऊपर हो जाता है, पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो फिर हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होती है। तो गुरु हरगोविंद साहिब जी पहले गुरु थे, 6वें गुरु थे, बट वो पहले ऐसी शख्सियत थे सिख धर्म में जिन्होंने शस्त्र धारण करके युद्ध लड़ने का निर्णय लिया और जनता जनार्दन को यह संदेश दिया कि अगर धर्म बचाना है तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का उपयोग भी आवश्यक होता है। वो जरूरी नहीं है किसी पर जुल्म करने के लिए हो, बल्कि जुल्म से आम मानव की रक्षा करने के लिए। तो गुरु हरगोविंद साहिब जी 2 तलवारें पहनते थे, वो एक मीरी की एक पीरी की, तो एक राजसाज को व्यवस्थित रखने के लिए और एक अध्यात्म की तलवार वो पहनते थे, जिससे कि परिपूर्ण परमात्मा के साथ उनका जो जुड़ाव है वो कहीं से भी खंडित ना हो। माया और राजसाज जितना भी प्रभाव हमारे ऊपर डालें, लेकिन जो हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है वो कहीं से हम भूले ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखने के लिए वो मीरी और पीरी नामक 2 तलवारें पहनते थे
1: जी। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कहा कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी जरूरी है
0: जी।
1: तो उस समय की जो तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां थी वो क्या थी जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा?
0: थोड़ा सा मैं यहाँ पे गुरु हरगोविंद साहिब जी के जन्म के बारे में बताना चाहूंगा। 1595 ईस्वी में उनका अवतार हुआ, जन्म हुआ
1: जी।
0: उस टाइम पे जहांगीर का शासन हिंदुस्तान पर, उस टाइम के दिल्ली की सल्तनत पर था, और ये जो बाबर के बाद से लेकर औरंगजेब तक का शासन था, ये जुल्मों से और बहुत तरीके की अव्यवस्थाओं, कुरीतियों से भरा हुआ। उस टाइम पे जो अपनी हिंदू और हिंदुस्तान की जनता थी वो बहुत से तरीकों की कुरीतियों से जूझ रही थी
1: जी।
0: ना केवल शासन के स्तर पर बल्कि अपने निजी स्तर पर भी बहुत से तरीके के पाखंड, आडंबर और व्यक्तिगत, जातिगत, धर्मगत, छुआछूत जैसी बहुत सी ऐसी अव्यवस्थाएं थी जो उनको एक मनुष्य के रूप में निखरने नहीं दे रही थी, विकसित नहीं होने दे रही थी
1: जी।
0: तो गुरु जी ने, गुरु नानक देव जी से लेकर 5वें गुरु जी ने बहुत विशेष काम किया इस पर। लोगों को जो सिखिज्म का मूल सिद्धांत है, कर्म करो, वंड छको और नाम जपो, तो इस सिद्धांत को उस समय से लेकर आज तक पोषित किया जाता है। कर्म करो यानी कि कर्मठ बनो, नकारापन, आलसीपन किसी भी मनुष्य के लिए बहुत घातक हो जाता है, और कर्म अगर ना करने की इच्छा जाहिर हो जाए तो फिर बंदा आराम से विकृत हो सकता है, जिसका कि समाज के कुछ राजसाज करने वाले लोग, गलत सोच वाले लोग फायदा उठाते हैं। तो गुरु जी ने सबसे पहले तो हमें कहा कि हमें कर्मठ होना पड़ेगा, कर्मठ होने के साथ साथ ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, ईश्वर से जुड़ने के साथ साथ अपने समाज के वंचित वर्ग और अपने जो भी भाई बंधु हैं उनके साथ मिल बांट कर जो भी हमने अर्ज किया है उसका उपभोग, उपयोग करने की प्रवृत्ति अपने अंदर लानी पड़ेगी, इसी से हमारे समाज का उत्थान होगा
1: जी। गुरु हरगोविंद साहब जी ने गुरु नानक जी के बाद से कुछ परिवर्तन किए धर्म में, किस तरह के परिवर्तन थे वो?
0: मूल परिवर्तन तो हम ये देख पाते हैं कि गुरु नानक देव जी से लेकर 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी तक उन्होंने अध्यात्म पर, ईश्वर के बारे में लोगों में चैतन्यता लाना, समाज की कुरीतियों को लोगों को बताना और उनसे ऊपर उठने का उपाय उनको देना, लंगर जैसी प्रथा, एक संगत एक पंगत जैसी प्रथा जो गुरु नानक देव जी ने चलाई, हम सबको पता है आज विश्व के लगभग सभी गुरुद्वारों में कोई वीआईपी कल्चर नहीं होता। लंगर एक ऐसी प्रथा है कि कोई भी भूखा अगर आया है अंदर उस दरवाजे पर तो प्रयास यही होता है कि वो भूखा वापस नहीं जाएगा
1: जी।
0: ये एक बहुत बड़ी सेवा के रूप में प्रथा चलाई गुरु जी ने। तो गुरु हरगोविंद साहिब ने उस प्रथा को कायम रखते हुए जब 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को बहुत तसीहे देकर, बहुत कष्ट देकर शहीद किया गया और उनका अपराध केवल इतना था कि वो ईश्वर के प्रति लोगों को जागृत करते थे, समाज के उन कार्यों के प्रति जो कि सत्ता शासन में बैठे हुए

0: लोग जबरदस्ती कराते थे, शोषण करते थे लोगों का, उनके प्रति लोगों को जागरूक करके और गलत और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जो प्रवृत्ति थी वो सब में पैदा करना, ये शासकों को सरकारों को समझ में नहीं आया, स्वीकार्य नहीं था, इस वजह से उनको शहीद कर दिया गया
1: जी।
0: फिर छेवें गुरु जी ने ये निर्णय लिया कि अब केवल शास्त्र से काम नहीं चलेगा, अब हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा, फिर छेवें गुरु जी ने युद्ध लड़ने की जो हमारी परंपरा है वो छेवें गुरु जी से शुरू हुई, गुरु हरगोविंद साहिब से, और उसके बाद आप देखते हैं इतिहास पढ़िए आप, जहां जहां भी जो जो भी अन्याय हुआ, चाहे वो विश्व युद्ध के समय पे हो, चाहे वो अपनी भारत की आजादी की लड़ाई हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार का, जब सत्ता में बैठे हुए अशक्तिशाली लोग जब कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, तो सिख अगर अकेला भी है तो वो उनसे लड़ने की ताकत रखता है, और ये ताकत हमें हमारे गुरुओं से मिलती है
1: जी। आपने बताया कि उन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र की भी बात की, लेकिन उन्हें बंदी छोड़ भी कहा जाता है, तो बंदी छोड़ दाता क्यों उन्हें कहा जाता है?
0: ये बड़ी महत्वपूर्ण और प्रचलित घटना है कि उस समय की सरकार ने गुरु हरगोविंद साहिब को शस्त्र रखने, क्योंकि उस टाइम पे सरकार के अलावा मुगल शासन के जो अनुयायी थे और उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनके अलावा किसी को शस्त्र रखने की इजाजत नहीं थी
1: जी।
0: या यूं कहें कि जो क्षत्रिय समाज था उसके अलावा किसी को शस्त्र रखने की इजाजत नहीं थी, और सिख धर्म के जो अनुयायी थे, गुरु जी के जो अनुयायी थे, वो लगभग सभी धर्मों से, सभी वर्गों से आते थे, सभी वर्णों से आते थे, तो उनको शस्त्र रखने की इजाजत नहीं थी। तो जब गुरु जी ने शस्त्र रखने शुरू किए, घोड़ों पर बैठने की इजाजत नहीं थी, घोड़ों पर बैठना और बैठाना शुरू किया, युद्ध कला सीखने की इजाजत नहीं थी, युद्ध कला सिखाना शुरू किया और तख्त पर बैठने की इजाजत नहीं थी, गुरुजी ने दिल्ली सल्तनत की जो तख्त की ऊंचाई थी उससे भी 2 फुट ऊंचा एक तख्त बनाया, जिसको हम आज अकाल तख्त के नाम से जानते हैं, जो कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में विराजमान शोभायमान है। तो गुरुजी ने ये सारे काम जब किए तो सरकार को बुरा लगा, तो उन्होंने उनको ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। लेकिन समय और समझ जब आई, एक साथ वहां के लोगों ने विचार किया, तो एक आध्यात्मिक गुरु हैं और इनका राज साज को बढ़ाने या सत्ता की कोई इनसे लड़ाई नहीं है, तो फिर जहांगीर ने उन्हें निवेदन किया कि हमने गलती की है आपको कैद करके, तो आप कृपया करके आप जा सकते हैं अपने जो भी आपका स्थान है। तो गुरु जी ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, आपने अपने अन्याय के क्षेत्र को फैलाते हुए हमारे साथ साथ 52 पहाड़ी राजाओं को कैद किया हुआ है
1: जी,
0: तो आप अगर इनको छोड़ेंगे तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं यही रहूंगा। तो जहांगीर ने कहा नहीं, इनको तो मैं नहीं छोड़ सकता, इनसे हमारी सत्ता की लड़ाई है
1: जी।
0: तो गुरुजी ने कहा नहीं, फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर उसने एक नीति खेली कि आपका चोला पकड़कर जितने लोग बाहर निकल सकते हैं मैं उनको बाहर जाने की अनुमति दे दूंगा
1: जी।
0: तो गुरु जी ने कहा ठीक है, आज से इतने दिन के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर गुरु जी ने अपने अनुयायी शिष्यों को निर्देश दिया कि हमारे लिए 52 कलियों वाला तनिया, बड़ी बड़ी डोरियां जैसे कहते हैं, वो बड़ी बड़ी उसमें लगवा ली, और सारे राजाओं को कहा कि एक डोरी सब लोग पकड़ लो
1: जी।
0: तो सबने डोरी पकड़ी और 52 के 52 राजा उनके साथ उस किले से बाहर आए, और जब वो बाहर आके अमृतसर दरबार साहिब पहुंचे तो वहां पे दिवाली का दिन था, तो उस दिन को पूरा सिख पंथ समाज बंदी छोड़ दिवस के रूप में बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाता है, और गुरु जी का नाम दाता बंदी छोड़ इसी घटना से प्रेरित होकर पड़ा है। अयोध्या के नजरबाग स्थान, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा जहां गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरण पड़े, इस धरती को उन्होंने पवित्र किया, उस स्थान पर भी जो दिवाली के अगले दिन बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, एक वार्षिक कार्यक्रम होता है, बहुत ही उल्लास और बड़े स्तर पर मनाया जाता है, लगभग पूर्वांचल के सभी कस्बों और शहरों से संगत आती है, हजारों की संख्या में जुड़ती है। तो आकाशवाणी के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी व्यक्तियों से निवेदन भी करूंगा, एक बार आके उस स्थान पे दर्शन करें, गुरुओं के उपदेशों को समझने की, आत्मसात करने की कोशिश करें, और अपने मानव जीवन को उस शिखर तक ले जाने की कोशिश करें, यात्रा आरंभ करें, जिसके लिए हमें ये जीवन मिलता है या मिला है।
1: ज्ञानी जी, हरगोविंद साहब जी ने किस तरह की शिक्षाएं दी है एक साधारण मानव के लिए कि वो एक अच्छा जीवन जिए और राष्ट्र के विकास में योगदान दे?
0: देखिए, एक मनुष्य के रूप में हमारे जो धर्म होते हैं, जो धर्म वो नहीं कि जिन रीतियों रिवाजों को हम मानते हैं, धर्म वो है कि जीवन के हर मोड़ पर हमारे कर्तव्य क्या हैं
1: जी।
0: तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान के लिए जब से वो जन्म लेता है और जब से उसका ये शरीर छूटता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तब से लेकर जितने भी विभाग, जितने भी प्रकार के उसके जीवन के मोड़ हैं, घटनाएं हैं, वो सभी के सभी गुरुओं की शिक्षा से हम उनको बहुत बेहतर करके अपना जीवन बहुत उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। गुरु जी ने हमें शिक्षित होना सिखाया, हमें आत्मबल बढ़ाने की प्रेरणा दी, हमें चैतन्य होना सिखाया, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, एक मनुष्य के रूप में, क्योंकि एक अच्छा

0: मनुष्य न केवल अपना बल्कि अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और इस सृष्टि का, इस पूरी पृथ्वी का हर तरीके से बेहतर ही कर सकता है, वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जैसा कि मैंने आपको सिख धर्म की जो मूल शिक्षाएं हैं बताई हैं कि किर्त करो, वंड छको और नाम जपो, इस देह में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर रहते हुए हम इस पृथ्वी को बेहतर कैसे बना सकते हैं और उस ईश्वर ने हमको प्रकृति के रूप में, सृष्टि के रूप में, मनुष्यों के रूप में जो एक बहुत बेहतर जीवन दिया है उस जीवन को उच्च शिखर पर कैसे ले जाएं और अपना जो हमारा फर्ज है, जो हमारा धर्म है उसको कैसे पालन करें, ये हमें गुरु जी की शिक्षाओं को पढ़कर, क्योंकि इतनी शिक्षाएं हैं इतने कम समय में बोल के नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए आपको उनकी शिक्षाएं पढ़नी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी और

0: के लिए आपको उनकी शिक्षाएं पढ़नी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, और मैं ये सबसे निवेदन करूंगा कि उनकी शिक्षाओं को पढ़ें, जानें और अपना जीवन सफल और बेहतर बनाएं। यही आज की इस चर्चा की सार्थकता रहेगी। ये जो समय चल रहा है, पांचवी गुरु जी गुरु हरगोविंद साहिब जी के जो पिताजी थे, उनके शहीदी दिवस का दिन चल रहा है। 18 को उनका शहीदी दिवस पूरे विश्व में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। उनके शहीदी दिवस को कोटि कोटि नमन करते हुए बहुत से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 18 तारीख को गुरुद्वारा नजरबाग में एक रक्तदान शिविर, एक स्वास्थ्य जांच परामर्श फ्री चेकअप कैंप भी आयोजित किया जा रहा है।
1: नजरबाग गुरुद्वारा अयोध्या में जी।
0: और आने वाली 30 तारीख को गुरु हरगोविंद साहिब जी का प्रकाशोत्सव पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। उस प्रकाशोत्सव को समर्पित आज की ये वार्ता होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं सभी से फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि गुरु जी के जीवन को पढ़ें और उसे आत्मसात करें। इसी से हमारी आज की ये जो वार्ता है वो सार्थक होगी।
1: जी बिल्कुल, हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं ने आपकी कही हुई बात को अक्षरशः अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया होगा या करेंगे आगे चल के भविष्य में। ज्ञानी नोली सिंह जी, आप ऐतिहासिक गुरुद्वारा नजरबाग से हैं और आपने हमारे सभी श्रोताओं को गुरु हरगोविंद साहब का जीवन दर्शन, एक परिचय, इस पर इतनी विस्तृत जानकारी दी और सभी श्रोताओं को प्रेरित किया। इसके लिए आपको सभी श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आपने सुनी ये वार्ता, गुरु हरगोविंद सिंह का जीवन दर्शन, एक परिचय। जानकारी दे रहे थे ज्ञानी नवनीत सिंह और आपसे बातचीत कर रही थी सरस्वती पाठक। कार्यक्रम में आगे पढ़ने से पहले आपको समाचार पत्रों की सुर्खियां बताएंगे, पहले ये छोटा सा अंतराल।
3: आपके संदेश,
4: संदेश से आते हैं
3: आपके गीत,
4: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
3: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
5: बदली स्टाइल, गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
7: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
2: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब आइए आपको बता दें समाचार पत्रों से स्थानीय सुर्खियां। दैनिक अमर उजाला के अनुसार राम जन्मभूमि परिसर स्थित शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। समारोह में 6,000 से अधिक मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। मेहमानों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण भेजने का भी क्रम शुरू कर दिया गया है। समारोह 23 जून को होगा। और आज रामनगरी पहुंचेंगे सीएम योगी, देंगे कई सौगात। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह का करेंगे उद्घाटन। रुदौली और अयोध्या में 628 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। माँ कामाख्या धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयार।

0: आज शाम 5 बजे काशीराम कॉलोनी स्थित रामायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। और बात परीक्षाओं की, जिले में 13 केंद्रों पर होगी नीट यूजी की पुनर्परीक्षा। हवाई मार्ग से पहुंचेंगे प्रश्न पत्र। 5,214 अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में शामिल अपने जनपद में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से आयोजित नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को जिले के 13 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगी। इसमें जनपद में कुल 5,214 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। मकबरा स्टेडियम में चल रहे फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। शिविर में बड़ी संख्या में बालक और बालिका खिलाड़ी नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को फुटबॉल के मूलभूत कौशल जैसे बॉल कंट्रोल, पासिंग, डिब्लिंग और फिटनेस संबंधी अभ्यास कराए। रायगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का आगमन जैन समाज के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। मुख्यमंत्री महोत्सव में शामिल होने के साथ ही 923 जिन पुत्रों को समर्पित भव्य मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। तो श्रोताओं, ये थे समाचार पत्रों से आज की सुर्खियां स्थानीय स्तर की। और आइए अब यहीं से हम इस कार्यक्रम की समाप्ति कर रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के ठीक बाद लेकर आएंगे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अबनियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना हेडिये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: प्रणाम अयोध्या।
0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध रंगों से सजा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। FM बैंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आपका अपना पसंदीदा व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
6: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में आप सभी का स्वागत है। व्हाट्सएप के जरिए आपके संदेश हमें मिले और आपकी फरमाइशें पूरी करने हम जा रहे हैं। पहला गाना आप तक पहुंचेगा फिल्म ओ रोमियो से मधुबंती बख्शी और जावेद अली की।

आवाज में होगा ये गीत। सुनना चाहा है गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लखप्रीत कौर और करमजीत कौर जी ने। लीजिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद पर ये गीत।

प्रोग्राम आपके संदेश आपके गीत में अगला संदेश हम तक पहुंचा है हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा श्रीमती रंजू बाई धाकड़ युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ की ओर से आप सभी ने सुनना चाहे बॉर्डर 2 फिल्म का ये गाना।

0: Hello.
1: Hello. No. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:00

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में आपका फिर से स्वागत है। अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में होगा, दो रास्ते फिल्म से। सुनना चाहा है सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गार्गी ने।

प्रोग्राम आपके संदेश आपके गीत का अगला गाना आप तक पहुंचेगा फिल्म एक रिश्ता से, और इसे सुनने की ख्वाहिश हम तक भेजी है व्हाट्सएप संदेश के जरिए। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
3: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: प्रोग्राम का अगला गीत है फिल्म बेताब से शब्बीर कुमार की आवाज में, सुनना चाहा है इंदिरा बिहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी और डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी जी ने। राजकोट गुजरात से इसी गीत को सुनेंगे अजीता कुटरिया, गौरैया चौक अंबाला से संदीप हगोड़िया और राकेश हगोड़िया जी। बक्सर से एस राज एस डी वली अंसारी जी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, तो लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना।

0: जी हाँ, गीत चल रहा था तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। श्रोताओं, प्रोग्राम था आपके संदेश आपके गीत, जो आपकी फरमाइशों पर चल रहा था आकाशवाणी अयोध्या से। और अब भाई आपकी पसंद का गाना सुनाने के लिए उबी लाइव फोन इन प्रोग्राम में हम आ गए हैं, जिसका नाम है हेलो अयोध्या। तो कार्यक्रम हेलो अयोध्या की हम शुरुआत करने वाले हैं। 7376804090 नंबर आपको डायल करना होगा, अपनी दिलचस्प बातों के साथ आना होगा, अपनी पसंद की गाना और फिल्म का नाम भी बताना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम की, इस पहले कॉमर्शियल ब्रेक के साथ।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
3: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
4: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
3: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
4: और साथ में अपना नाम, पता
3: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
4: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
0: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में

0: 1:30 से 2:00 के बीच।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। देखिए, हमसे एक श्रोता जुड़ी और इनका नाम था सोनू, और अजीब अजीब श्रोता हमसे जुड़ते हैं। इनका कहना है कि नहीं, हम रेडियो पर बात नहीं करेंगे, हम अपनी फरमाइश ऐसे ही बता देते हैं। भाई, मेरी गुजारिश है आप सबसे कि ऐसा ना करें, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है हेलो अयोध्या, और आप अपनी दिलचस्प बातों के साथ अपनी पसंद का गाना सुनिए, अपनी फिल्म का नाम हमें जरूर बताइए और फिर हमारे लाइन से जुड़िए। देखिए, अगले श्रोता जुड़ते हैं इनसे। हेलो
1: सर,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: ये हम सदानंद बोल रहे हैं, अबनपुर सरोहा जिला अयोध्या से।
0: सदानंद जी, हमारे नियमित श्रोता हैं आप, तो इससे पहले कब फोन लगा था आपका सदानंद जी?
1: सर जी, हमारा 7 जून और 8 जून को फोन लगा था, उसके बाद 9-10 को फोन उठाया ही नहीं गया था।
0: 7 और 8 और आज है 19। चलिए ठीक है, आपने गैप बना के रखा है। सभी श्रोताओं से मेरी गुजारिश है कि जिनका फोन लगा हो इधर 2 हफ्ते में, वो लोग फोन नहीं करेंगे। कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप सर?
1: सर, हम ये अफसाना प्यार का सुनना चाहते हैं, ये याद तेरी आती है मुझे तड़पाती है।
0: ये फिल्म का नाम है अफसाना तेरे प्यार का?
1: अफसाना प्यार का।
0: अफसाना प्यार का, देखें हमें मिलता है अफसाना आपका।
1: अफसाना प्यार का,
0: जी जी मैं समझ रहा हूँ, अफसाना प्यार का आप कह रहे हैं। हमारे पास ये एल्बम अगर होगा, ये फिल्म, तो हम आपको जरूर सुना पाएंगे। और हमारे पास अफसाना प्यार का नहीं है। और कोई फिल्म की फरमाइश?
1: तो फिर लोफर का सुना दीजिए।
0: लोफर में कौन सा?
1: लोफर में सुना दीजिए।
0: कौन सी लोफर, पुरानी वाली ना?
1: मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं, पुरानी वाली।
0: मैं तेरे इश्क में, चलिए। और क्या करते हैं सर आप?
1: सर जी, यही खेती बाड़ी करते हैं।
0: बहुत बढ़िया जी। जी बस सुन रहा हूँ मैं आपकी बात।
1: सर जी, ये जैसे हम फोन मिलाते हैं, कितने दिन बाद फिर फोन मिलाए हम?
0: 2 हफ्ते तो रुकी जाया करिए कम से कम।
1: जैसे 9:30 बजे मिलाते हैं, फिर वहाँ फोन ही नहीं उठाते हैं, 2 हफ्ते बाद मिलाया करें।
0: हाँ, 2 हफ्ते बाद मिलाया करें, महीने में 2 बार से ज्यादा मत जुड़िए
1: जी।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया। लीजिए, आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। ठीक है, शुक्रिया,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार।

0: वही प्रोग्राम हेलो अयोध्या में जुड़ रही हमारी अगली श्रोता। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही बताइए।
1: नमस्कार, मैं सुनीता बोल रही हूँ तरबगंज रांगी से।
0: सुनीता जी ने फोन लगाया है तरबगंज से, बहुत स्वागत है आपका। किस फिल्म का गाना सुनेंगे आज?
1: गंगा जमुना सरस्वती का।
0: जरूर सुनवाएंगे आपको, क्या करती हैं आप?
1: जी हम हाउसवाइफ हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, तो घर के सारे काम संभाल रही हैं, परिवार को आप संभाल रही हैं, कैसा लगता है आपको घर का काम करना?
1: बहुत अच्छा लगता है सर।
0: अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, हर आदमी को अपने काम का अहमियत समझना चाहिए और उसको मजे से करना चाहिए, है कि नहीं?
1: बस अगर खुशी खुशी करोगे तो इंसान के अंदर आपकी कीमत होगी, अगर
0: बिल्कुल
1: सही नजरें चुराएगा और क्या।
0: और क्या, और इससे अपनी जिंदगी भी अच्छी रहती है जब भी हम अपनी चीज को पसंद करते हैं और उसको मजे से करते हैं। क्या करना घर के कामों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको, कौन सा काम ज्यादा अच्छा लगता है?
1: सबसे ज्यादा अच्छा लगता है बस यही, खाना बनाना, खिलाना, सबका कपड़ा धोना, काम करना, यही है घर के काम में, और क्या रहता है।
0: बिल्कुल, और खाना जब किसी को पसंद आ जाता है घर में, बच्चों को या पति देव को कहते हैं बहुत बढ़िया बनाया, तो उस दिन तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है ना।
1: हाँ वो तो होता है
0: जी। चलिए आपका पसंद का गाना। हाँ बताइए।
1: कभी अच्छा भी बनता है और कभी बुरा भी हो जाता है, किसी दिन तो लड़ाई भी होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो चलता रहता है, बिल्कुल चलता रहता है। चलिए तो आपका गाना हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है सुनीता जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
1: जी

0: प्रोग्राम हेलो अयोध्या चल रहा है 7376804090 ये नंबर है मैजिकल, इसे डायल कीजिए और जुड़िए इस प्रोग्राम से जो चलेगा 10 बजे तक। हेलो
1: जी सर।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: भिखारी यादव लुधियाना ग्रैंड गोंडा से सर जी।
0: गोंडा से भिखारी यादव जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: क्या करते हैं सर आप?
1: सर खेती बाड़ी काम करते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छा काम करते हैं भाई ये तो, और बड़ा सम्मान होता है हम सबके हृदय में किसानों के लिए। क्या कुछ लगा रखा आपने खेत में अपने सर?
1: सर सब्जी में घुइया है, बैगन है, भिंडी है, यही सब है सर जी।
0: घुइया, बैगन, भिंडी है ना
1: जी,
0: सब सब्जियां थोड़ी सी लसलसी और गीली वाली हैं, है ना। चाहे बैगन बनाइए, चाहे घुइया बनाइए, चाहे भिंडी बनाइए, सब में एक लसलसापन है नहीं, और ये जो है पेट को साफ करने में मदद करती हैं ऐसी सब्जियां, है कि नहीं?
1: जी सर, ये बारिश नहीं हो रही है, दिक्कत है।
0: तो क्या बारिश, अच्छा इन सब्जियों को बारिश चाहिए आपके खेत को ना?
1: जी बारिश होती तो रेट नहीं है सर जी इस समय।
0: अच्छा रेट बढ़ जाता है?
1: जी सर, बाजार में 20 रुपए किलो बिक रही है इस समय।
0: अरे बाप रे बाप, तो आप 20 रुपए किलो कौन सी वाली सब्जी बेचते हैं? तीनों ही 20?
1: भैया का रेट इस समय सर जी थोक रेट 20 रुपए 22 रुपए है।
0: बाप रे बाप, और बाजार में कस्टमर को कितने का मिलता है फुटकर में?
1: लमसम 30 रुपए से 35 रुपए 40 रुपए किलो तक।
0: मतलब डबल रेट कर लेते हैं ये फुटकर वाले?
1: जी सर।
0: हैं?
1: हम भी सर शाम को सर थोड़ा बहुत लेकर जाते हैं फुटपाथ पर बेचने के लिए।
0: अच्छा अच्छा, तो आप भी 40 का बेचते होंगे उसको भी?
1: जी जैसे हम लोग किसान है सर जी, हम लोग को कहाँ दाम देते हैं।
0: वो जान जाते हैं कि खेत से तैयार करके लाए हैं, इनको कम
1: ही। हाँ जैसे ताजा रहता है बिक जाता है हम लोग का भी, लेकिन जैसे 25-30-35।
0: जी जी बिल्कुल सही,
1: हमारे ही बगल में बाजार है छोटा, दुर्गनपुर चौराहा है।
0: तो मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि हमारे किसान भाई जो 20 रुपया किलो सब्जी तैयार करके बेच रहे हैं उसको 40 में फुटकर में बेचा जा रहा है।
1: जी जी जी सर,
0: सारी मेहनत
1: आप, डबल तो बेचते हैं सर,
0: मेहनत आपकी है सारी, है कि नहीं? चलिए बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करके, अच्छा लगा। भिखारी जी आपकी पसंद का गाना पहुंचा रहे हैं, बहुत प्यारा गाना आपने चुना करण अर्जुन फिल्म का, शुक्रिया।
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार भैया।

0: है बहुत ही प्यारा नगमा बज रहा है आप लोगों की पसंद पर, हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं की पसंद पर। हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: सर प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: अरे वाह, प्रेम सिंह सिसोदिया जी उज्जैन से जुड़ गए हैं महाकाल की नगरी से। इससे पहले भी आपसे मेरी बात हो चुकी है कार्यक्रम में, कब इससे पहले बात हुई थी सर?
1: जी बिल्कुल, इसी प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब आप आते हैं ना प्रोग्राम देने के लिए,
0: जी,
1: मैं कैसे भी करके कॉल मिला के आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे फेवरेट हो।
0: अरे थैंक यू सर। और हमारा जाना भी हुआ था उज्जैन, और
1: हाँ जी,
0: तो वहाँ से इंदौर जाना हुआ। इंदौर हमने देखा, बड़ा खूबसूरत शहर है भाई, बड़ी साफ सुथरी।
1: हाँ, इंदौर और उज्जैन दोनों लगभग पास में ही शहर है। हाँ? बड़े खूबसूरत, और एक बात ही दोनों शहर की, एकदम साफ सुथरे क्लीन शहर मिलेंगे आपको।
0: हाँ, लेकिन उज्जैन में तो उतनी सफाई नहीं मुझे दिखी, माफी चाहता हूँ, लेकिन इंदौर बहुत ही साफ सुथरा था, ये सच है।
1: हाँ जी, इंदौर तो पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है सर सफाई के लिए।
0: मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में उसको पहला स्थान मिला है भाई।
1: बिल्कुल।
0: तो वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी में गिना जाता है। तो हम समझते हैं, जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमारे सुनने वाले, सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने शहर को ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, है कि नहीं?
1: जी जी बिल्कुल। जैसे इंदौर से जुड़ा हुआ उज्जैन शहर है ना, तो वहाँ के लोग भी काफी जागरूक है साफ सफाई के बारे में। बस थोड़ा बहुत क्या होता है, हो जाता है कचरा, लेकिन फिर भी लोग काफी जागरूक है वहाँ के।
0: ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आपकी पसंद का हम गाना जरूर बजाएंगे, लेकिन प्रेम जी एक अंतराल के बाद वो गाना बजेगा, ठीक है? हम पहले कमर्शियल ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आपका गाना होगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
1: नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, और गाने के बोले जहाँ तक चले चलो सदना जहाँ तक घटा चले,
0: जरूर यही गाना बजेगा। आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: समय पर बुआई

0: की भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो।

0: करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
1: हमारे अगले श्रोता भी लाइन पर हैं, लेकिन पहले जिनसे बात हुई उनकी पसंद का गाना ही जा रहा है, उन्हें वेट करना होगा।

0: भाई प्रोग्राम में आखिरी 5 मिनट बाकी हैं और मोहम्मद राजिक जी बछड़ा सुल्तानपुर से हमसे जुड़े झुमका गिरा रे गाना सुनना चाहते हैं आशा भोसले जी की आवाज में, इनसे बात करते हैं। हेलो। अच्छा हमें लगता है वो लाइन से बाहर जा चुके हैं, हमारे दूसरे श्रोता जुड़ेंगे। हेलो जी सर, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते, मैं रुपेश तिवारी बोल रहा हूँ सर, अयोध्या से।
0: रुपेश जी का बहुत स्वागत है। एक देखिए आप बड़े लकी रहे आखिरी कॉलर के रूप में और एक श्रोता निकल गए और आप इन हो गए, बहुत बधाई आपको। कौन सी फिल्म का गाना सुनिएगा रुपेश भाई?
1: सर मैं बॉबी फिल्म का गाना सुनूंगा, झूठ बोले कौवा काटे।
0: ओ हो, क्या बात है। तो आप ये मानते हैं कि झूठ बोले कौवा काटता है?
1: अरे नहीं सर, ये तो एक टाइटल है फिल्म का।
0: अच्छा नहीं तो अच्छा, झूठ बोलने मान लेते हैं कि कौवा नहीं काटता है, लेकिन क्या होता है अगर कोई झूठ बोलता है तो क्या दिक्कत आती है, आप बता सकते हैं?
1: नहीं सर, ऐसा है, झूठ तो बोलना नहीं चाहिए अपनी लाइफ में से।
0: बहुत अच्छी बात,
1: आगे आपको प्रोग्रेस करना है तो झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए सर।
0: बहुत सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो कभी झूठ ना बोले?
1: नहीं सर, कहीं बहुत यदि समझो अपनी जान पे है तब तो कोई बात अलग की है सर, लेकिन ऐसे लाइफ में बोलना नहीं चाहिए सर, क्योंकि आगे हमारे जो है ना बच्चों पे वही प्रभाव पड़ता है आगे चल के।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि सच बोलें, और सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये तिवारी जी ना कि

0: सच को याद नहीं रखना पड़ता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है मैंने कौन सा झूठ बोला था, और आप अपना झूठ अगर भूल गए तो फंस जाएंगे, है कि नहीं?
1: जी सर, उसके पीछे दूसरा झूठ बोलना पड़ जाता है सर, पानी के लिए सर,
0: और आदमी फंस जाता है आखिरकार।
1: जी आखिर।
0: चलिए, तो आपका गाना अच्छा है, अच्छा संदेश है तिवारी जी, हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है, रेडियो पर सुनिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वेलकम।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम को अब तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया राजकुमार मौर्य जी ने, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक प्रस्तुतकर्ता थे जयंत पटेल। और अब अपने दोस्त सदक को दीजिए कार्यक्रम हेलो अयोध्या से अनुमति। नमस्कार।

0: सौ तन लाऊंगा तुम देखती रहियो मैं तेरी सौ तन
1: ला। अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं। काम

0: करना चाहिए, कोई काम छोटा
1: नहीं। हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से यही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा, तो किसके हाँ। लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे।

0: मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
1: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है, तो बाग आपके पास भी है?
0: चार पांच पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
1: अच्छा, सिर्फ चार पांच पेड़? भाई हमने तो
0: चार पांच
1: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
0: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मैम पांच छह पेड़।
1: अच्छा अच्छा जी, बताए कौन सा गाना आपको सुनवाए?
0: देवफासनम का सुनना है मैम।
1: कौन सा?
0: अच्छा शिमला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
1: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में ऐसा गाने?
0: नहीं मैम, पर नहीं नहीं पसंद नहीं है मैम।
1: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नईम मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से

0: कितनी दूर है आपका गांव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहां जाते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं, और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है, और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टैल मार्बल और सीटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाते हैं वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा?
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी,
0: 48
1: नॉर्मल सी लगती
0: जी
1: है।
0: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं, उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन ऊपर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है, चाहे अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्र की तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है, और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको सबसे वो आपको पता है ये पहलगाम कश्मीर में पड़ता,
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने, बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: वो क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास, वो आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 67-62 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले बाल वाले रेडियो चलते थे,
0: यानी
1: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की, बाल वाले रेडियो।
0: क्या बात है, तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, आप तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा, अब तो सुनना तो और ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: हाँ, मोबाइल।
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था, उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी। हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था।
0: जी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बाडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम तमाम, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
0: बिल्कुल
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते हम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती से, हम प्रसार भारती से 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी दो लाइन बोलनी थी।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: चलता है फिर तो।
0: वाह वाह वाह, आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गांव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का

0: होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे का भी बाजार में आने लग गया है ना हमारे इधर, तो हम खा लेते हैं तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं का चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: जी देखी है जी मैंने।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकिजा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोंगलपोरा श्रीनगर से जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है, आज धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम धागे बनाते हैं ना,

0: फिर वो हम सीढ़ी पे लगा मतलब उसमें लगाते
1: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं।
0: हाँ वो धागे से बनाते हैं।
1: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
1: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
0: थोड़ा बहुत गाते हैं।
1: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे आप गुनगुनाएंगे तो।
0: आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
1: बहुत शुक्रिया। सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया, सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों।

0: के साथ जब होते हैं, है ना।
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी, रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज दबारी
0: जी। बताए धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर। लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें आजाद रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा।
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है। और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जो दाना डालते है, रोटी डालते है मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है, तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा सुंदर लगता है।
1: बिल्कुल, मोरों के बीच में गाँव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते है।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में जुआर है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते।

0: के और मकाई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
1: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है क्योंकि
0: बिल्कुल आते हैं। चकली का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। हाँ। मेरा गांव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
1: तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
0: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते है, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
0: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है। हाँ। जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
1: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
0: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
1: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे वो भी आपको पता ही होगा ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
1: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपने बेटे को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे, हम आम खाने के लिए।
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपने के पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: जी दीदी मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और उनकी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाए जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करती हैं तो।
1: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है तो घर में जैसे की गाय है, भैंस है, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे की खन की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गाँव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ करता था
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना, उस टाइप का था,
0: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
1: जी जी,
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी दीदी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा, आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना। मैं

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 28670288, और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। मैं हूं विधि जैन। पहली नज्म हम सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गालिब के बोल और फैयाज शौकत ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: पिता।
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, लिया है गीत गजल एल्बम से। धीरज कौर ने इसे गाया, मोहसिन नकवी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने इसे संगीतबद्ध किया।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से मुकेश की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों के साथ, मुरली मनोहर स्वरूप के संगीत से के साथ में यह प्यारा सा नगमा।

0: इंद्राणी रिज्व और राजकुमार रिज्वी की आवाज़ में हम सुन रहे थे इस नगमे को। बशीर बद्र ने जिसे लिखा और बेनी सतामकर ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा।

0: मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से. तलत महमूद ने इसे गाया. इब्राहिम फैज इसके गीतकार हैं और संगीतकार हैं ताज अहमद. आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अगली नज्म जो गाई है हेमंत कुमार ने. संतोख सिंह इसके गीतकार हैं और तरसीम लाल इसके संगीतकार हैं.

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीय

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं नॉन फिल्मी गीत एंड गजल्स एल्बम से मन्ना डे के द्वारा गाया हुआ और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ यह नगमा, जिसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने।

मॉडर्न नॉन फिल्मी गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजे हुए खयाम के संगीत के साथ इस सुंदर से नगमे को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एल्बम से। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इसे गाया है, साहिर होशियारपुरी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है।

0: जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला नगमा।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला के अंतर्गत सरकार के 12 साल।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
3: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़ एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
2: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
3: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो

0: कई गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनको पूरी की जा सके, उस पर्पज से पीएमडीवाई को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएमडीवाई योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-2-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब ये यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री

0: और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
1: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
0: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, एक प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
1: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
0: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
1: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड इट मीन्स दैट बाय स्ट्रेंथनिंग द फिजिकल कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंक्स, एंड इंटीग्रेटिंग द रीजन इन टू ए रीजनल वैल्यू चेन विद द साउथ ईस्ट एशिया, एंड आई थिंक ऑल द स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स एक्चुअली टेक अस टू दैट पर्टिकुलर पैराडाइम, एंड इट्स ऑल्सो एसेंशियल दैट दिस अप्रोच रिकोगनाइजेज नॉर्थ ईस्ट एज बोथ अ नेशनल एसेट एज वेल एज अ गेटवे टू एक्सटर्नल मार्केट्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस बैलेंस द स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज।
0: सो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
1: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में, माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट पांच पांच छह छह साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में, तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और

0: was that people are looking at faster execution. People want the plant up in 11 months, not in 22 months. So these are the challenging outcomes which we need to work on. And cost of doing business is important. So these two are what I would say continue to focus, continue to work on them. But then the one piece I would add, GST, when it was implemented, it was a landmark reform, not because of what it did. It brought center and states together to agree on a policy together as one team. Now, there are difficult reforms which we have to do. I think GST-like structure will help us.
1: Mr. Mukundan, thank you very much.
2: In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry, CII. Interviewer was Shishir Sinha, journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला के अंतर्गत सरकार के 12 साल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
4: टॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
5: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
8: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं ये देवी गीत।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान

सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आइए सुनते हैं अमरनाथ यादव और साथियों की आवाज में, ये किसानी लोकगीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा,
3: कम खर्च में ज्यादा निर्माण।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: इसी के साथ अवधी लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं।

0: प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या। तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
4: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
2: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
4: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
2: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
4: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
2: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
4: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
5: फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के आज के सफर में मैं ऋचा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कार्यक्रम में ये जो पहला संदेश आया है राघव बघेल का लघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, हरचिंदर छिंदा का नथाना पंजाब से, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से, सुदर्शन शाह पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, धीरज वी रवारी का ये संदेश आया है गुजरात पाटन से, मोहम्मद यासीन हाशमी का नई बस्ती गंज डुंडवारा से, राजेंद्र नारक बटीरा रोड मंडी डबवाली से, अनिल जैन मलियान सरधना मेरठ से, और ये अगला संदेश आया है नानक खन्ना का हरियाणा से, अब्दुल गफ्फार का ये संदेश आया है खंडवा से, जसबीर सिंह अरोड़ा निमनाबाद जिंद हरियाणा से, नंदन कुमार सिंह बेगूसराय बिहार से, और ये अगला संदेश आया है ईशान

अहमद अंसारी का मदरसा गेट जौनपुर से, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, अशोक सिंह धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से, रामेंद्र भूषण पांडे का ये संदेश आया है और ये अगला संदेश अशोक वर्मा जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, टीडी मल्होत्रा मोहाली चंडीगढ़ से, राजेश छत्रपति संभाजी नगर से ये संदेश आया है और ये अगला संदेश विनोद बरासा का आया है गाँव खोखरा वाली का। और सिद्धार्थ गोंडाने का संदेश आया है राहुल नगर अमरावती से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये प्यारा संगीत।

कार्यक्रम में ये अगला संदेश आया है उत्तम कुमार भगत का पाकुड़ झारखंड से। फरियाद हुसैन अंसारी का संदेश आया है कस्बा सेंथल बरेली से। शुभचंद्र बजाज कालका से। सोमदत्त नाभा पटियाला पंजाब से। मोहम्मद इंतजार भोजपुर तगा सहारनपुर से। सुभाष गोदारा का संदेश आया है गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से। दिग्दर्शन गौड़ मेरठ कैंट से। ओम बगड़िया का संदेश आया है गांव बांडीवाला फाजिलका से। किशन लाल सपकाल का ये संदेश आया है शास्त्री नगर बीट शहर से। रश्मि पांडे राजकोट गुजरात से। राजू मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से। विनायक पिंडे आकोट से। उत्तम सिंह कोहका भिलाई से। विनोद मूणत उज्जैन बोरखेड़ा से। और ये अगला संदेश बब्बल मल्होत्रा का आया है मोहाली पंजाब से। गोविंद वैष्णो लसुडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से। प्रवीण सोनी गुजरात गांधी ग्राम से। खिल्लू परवेश का ये संदेश आया है हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से। एम खलील कुरैसी का संदेश है पटियाला रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। तुलसीदास मस्कीन पंचकूला चंडीगढ़ से। और ये अगला संदेश आया है मोहम्मद कलीम अंसारी गंज डुंडवारा से। बनवारी लाल कुशवाहा का संदेश आया है जनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। सदाशिव थोरात का संदेश आया है देगांव पूर्णा महाराष्ट्र से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगला संदेश दीपेश वर्मा का, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश सीताराम एकता कॉलोनी रोहतक से आया है। अगला संदेश वीरेंद्र भगत हजारीबाग झारखंड से। दातार सिंह गोविंद पूरा सीकर राजस्थान से। अजीत कसाना का यह संदेश आया है लदावली जिला मुरादाबाद से। अंजान कुमार सिंह काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से। और ये अगला संदेश आया है बनवारी जैसवार का जिला श्रीगंगानगर से। नंद किशोर घटे बीट शहर महाराष्ट्र से। कैलाश फूलमाली का ये संदेश आया है अहमदपुर खैगांव खंडवा से। सुरेश जायसवाल जमानिया जिला गाजीपुर से। बलकरण वर्मा ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और ये अगला संदेश आया है हुकुम करमरकर का बेड़ी मध्य प्रदेश से। सुरेश राठौर गांधीनगर गुजरात से। आर्यन राज मुजफ्फरपुर बिहार से। रविन्द्र मोहन दास का ये संदेश आया है किशनगंज बिहार से। राजू माठे का संदेश है जलगांव जामोद बुलठाणा महाराष्ट्र से। राजकुमार डूडी गांव फरासी जिला हजारी से। संतोष भाकरे का ये संदेश आया है शाहजी नगर महाराष्ट्र से। बोधराज खोरवाल का ये अगला संदेश उत्तम नगर दिल्ली से। के आर साउ देवरी भाटापारा से। रूपेश संगई परभड़ी महाराष्ट्र से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, एक सूचना। दिनांक 22 जून 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में चर्चा का विषय है गर्भावस्था एवं प्रसवोत्तर से जुड़ी सामान्य समस्याएं एवं समाधान। विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजुषा पांडे। इनसे बातचीत करने के लिए आपको डायल करना होगा आकाशवाणी अयोध्या का फोन नंबर 7376804090। समय एक बार पुनः सुन लें, 22 जून 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। कार्यक्रम में ये अगला संदेश आया है राधा नामदेव का सहारनपुर से, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा का, और ये अगला संदेश बाबा कुटीर रायगढ़ से ये संदेश आया है शिव कुमार चौहान का, फैसल इमाम हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, विजय सुरलकर का संदेश आया है मोताला महाराष्ट्र से, धर्मेंद्र छिपा भोपालगढ़ राजस्थान से, और ये अगला संदेश आया है मनोहर मगर का अक्षय कॉलोनी महाराष्ट्र से, चिन्मय महतो जमशेदपुर से, संजय ढींगिया का ये संदेश आया है बागपत उत्तर प्रदेश से, महेंद्र मोदी ठाकुर साहब का ये संदेश आया है रामगढ़ कैंट से, मुकेश शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से, फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से, आफताब अंसारी गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, और ये अगला संदेश आया है उमा सिंह का उत्तराखंड से, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से, और ये अगला संदेश है विष्णु मस्कीन का सोलापुर महाराष्ट्र से, सतीश अनेजा का संदेश है चंडीगढ़ से, राजेश कुमार अकेला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, शेख जियाउर रहमान का ये संदेश आया है मानपुर साबित मुरादाबाद से, ओम प्रकाश राय कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, और मोहम्मद जाकिर मंसूरी का ये संदेश आया है बाजार रोड मुंगीसापुर से, नीलू मेक का ये संदेश है राजधानी रायपुर से। तो आइए सुनते हैं आप सबके पसंद पर किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और कार्यक्रम में ये अगला संदेश आया है चंदेश गौहर मध्य प्रदेश से, तुलसी मस्किन गोहर्धन शाहदरा दिल्ली से आया है, और ये अगला संदेश आया है उमेश कुमार गौड़ बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। एम अफजाल ताज का ये संदेश आया है कोल सिटी बरकाकाना से। सदानंद मंदूरकर का संदेश आया है डाबकी रोड अकोला से। अब्दुल सत्तार अब्बासी का संदेश है मुगलपुरा बागपत से। राजेश वर्मा लालकुर्ती रुड़की कैंट से। मुकेश शर्मा का ये संदेश आया है भिलाई छत्तीसगढ़ से। धीरज भाई राबड़ी का ये संदेश आया है, और ये अगला संदेश विनायक बेंडे आकोट से आया है। और बब्बल मल्होत्रा का संदेश आया है मोहाली पंजाब से। गोविंद वैष्णो राजगढ़ मध्य प्रदेश से। प्रवीण सोनी गुजरात गांधी ग्राम से ये संदेश आया है। और मास्टर खिल्लू परवेश का संदेश आया है हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से। राम कुमार रेवाड़ का संदेश आया है सादुल शहर राजस्थान से, और ये अगला संदेश आया है दीपेश वर्मा पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। नंद किशोर घटे महाराष्ट्र से, और ये अगला संदेश कैलाश फूल मालिक आया है अहमदपुर खैगांव खंडवा से। अशोक सिंह का ये संदेश आया है धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

प्रमोद कुमार साहू बोरसरा छत्तीसगढ़ से। और ये अगला संदेश आया है राहुल मनवर का शाहू नगर यवतमाल से। और ये अगला संदेश है रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से। गजानन येली का संदेश है सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और ये अगला संदेश आया है भेरूलाल वाकतरिया का धाकड़ का। ये संदेश है जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। राधेश्याम शर्मा हांडी खेड़ा से। और ये अगला संदेश प्रवीण श्रीमाली का खरगोन मध्य प्रदेश से। नारायण लाल साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। जगमोहन सिंह प्रजापति लाहौडडा बागपत से। और ये अगला संदेश है उत्तरा दिवाकर का पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से। और ये अगला संदेश है दिलावर खान का रघुवीर नगर से। रज्जाक मोहम्मद का संदेश है हनुमानगढ़ राजस्थान से। उमेश कुमार गौड़ पीतमपुरा न्यू दिल्ली से। नरेश मल्होत्रा नीटू का ये संदेश आया है खैल बाजार पानीपत से। मुजफ्फर अली खान का ये संदेश है इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये संदेश आया है विनोद वंडलकर का रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा संगीत।

कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में ये अगला संदेश आया है कमल सहाय का नागपुर महाराष्ट्र से, अनिल कुमार घोटके संभाजी नगर महाराष्ट्र से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी का संदेश आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, यासीन अंजान दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से।

कार्यक्रम में अगला संदेश आया है एसएम जावेद का गुमला झारखंड से और ये अगला संदेश टीटी मल्होत्रा का मोहाली चंडीगढ़ से अरुण कुमार मालवीय बड़ी गेबी चौराहा वाराणसी से सुरेश गगनेजा का ये संदेश आया है जलालाबाद वेस्ट से मोहम्मद यासीन अंजान दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से और ये अगला संदेश आया है प्रमोद कुमार साहू का बुरसरा छत्तीसगढ़ से सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराव पंजाब से प्रवीण श्रीमाली का संदेश आया है कंवर कॉलोनी बड़वा खरगोन मध्य प्रदेश से किशन सपकाल का यह संदेश है शास्त्री नगर बीट शहर से पीएस नहाकर का संदेश आया है नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से कमल सहाय नागपुर महाराष्ट्र से रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से और ये अगला संदेश आया है निसार सलमानी का धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से और ये अगला संदेश आया है कस्बा सेंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी राजू मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से मिट्टू भाटिया का संदेश आया है झज्जर हरियाणा से तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म शोले से ये गीत

कार्यक्रम में अगला संदेश आया है बड़ाबम चौक खंडावा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडे का और यानवर अंसारी अहमदगढ़ मंडी पंजाब से, चंद्रकांत साहू छत्तीसगढ़ से, और ये अगला संदेश आया है संतोष खटसे का यवतमाल महाराष्ट्र से, राजपाल आदर्श नगर पंजाब से, और ये अगला संदेश आया है वीरेंद्र भगत का हजारीबाग झारखंड से, फहीम मंसूरी का ये संदेश आया है बांदा उत्तर प्रदेश से, कमल सिंह का ये संदेश है मजनू का टीला से। तो आइए सुनते हैं आप सबके पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम कुछ तुमने कहा कार्यक्रम में अगला संदेश मुकेश गौतम का आया है चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से और ये अगला संदेश आया है प्रभाकर गुप्ता का उघैती से। शमसुल कमर राही का संदेश है गंज डुंडवारा से। सोमेंद्र यादव शंकरपुर उसामा बदायूं से। लाल बाबू दीवाना जेल रोड दिल्ली से और ये अगला संदेश आया है अनिल वर्मा का सदर बाजार कुरावली से। बिट्टू भाटिया झज्जर हरियाणा से। जगदीश धाकड़ नायमा हिंगड़ी आलोट जिला मध्य प्रदेश से ये संदेश आया है। सैयद यूनुस का जालना मराठवाड़ा का से ये संदेश आया है और ये अगला संदेश आया है रामचंद्र माखीजा का धमतरी छत्तीसगढ़ से। नरेंद्र शर्मा कलानौर से आया है। पोपट राव का ये संदेश आया है कुलथे बीट शहर महाराष्ट्र से। संजय मारकंडे का संदेश आया है खंडवा से और ये अगला संदेश आया है सतवीर सिंह का गांव खारिया ठाणी सिरसा हरियाणा से। चंद्रकांत साहू छत्तीसगढ़ से और ये अगला संदेश है चंद्रकांत साहू का आया है छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश है अफजाल ताज का कोल सिटी बरकाकाना से। कुंवर कृपाल सिंह परिहार का संदेश आया है आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से। संतोष खटसे का ये संदेश है यवतमाल महाराष्ट्र से और ये अगला संदेश आया है राम कुमार रिवाड़ का सादुल शहर राजस्थान से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम कुछ तुमने कहा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं, प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये गजल।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: कार्यक्रम गीतांजलि में अब आइए सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत।

फाल्गुनी पाठक की गाई इस गीत के साथ कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की

0: 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम,

0: इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Our position on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता रहा हो।
3: Untouched by the profound changes of the past 6 decades.
1: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। बहने सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम अंगना।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
5: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम अंगना मा होए वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
6: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
8: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: अगला कार्यक्रम सुन ली सभी सखियन और श्रोता जन का वंदना सखी की वारी से प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हर कार्यक्रम में हम लाए थे आप सभी के ताए कुछ बढ़िया जानकारी, कुछ बढ़िया बात कही। तो सखियों, आज जो है देखो 19 जून, तो आज पूरी दुनिया में संघर्ष में यौन उत्पीड़न के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावा जाता है। श्रोताओं, जब कहूँ लड़ाई झगड़ा होता है, जंग छिड़त है, तो तोप और गोला सिर्फ मकान और सरहद ही ना ढावत, वो सबसे पहले मानवता का ही खत्म करत है। आज के दिन कौनो उत्सव मनावे के दिन नहीं है, सोचे बिचारे के है और ऐसन जिंदगी के खिलाफ मजबूती से खड़ा होए के दिन है। हमने सभी ये बात नीचे से जानी थे कि जब कहूँ दंगा भवा है, गृह युद्ध भवा है या दुई देशन में जब कनो जंग हुई है, तो हुआ कि महिला बहनन, मासूम लड़कियन और कमजोर लोगन का सबसे ज्यादा जो उन्हें नुकसान भवा है, उनके ऊपर जुल्म भवा है। दुश्मन फौज या उपद्री लोग यौन हिंसा, बलात्कार और जबरन दास्ता का एक हथियार के तरह

0: हुए या फिर देश दुनिया हुए। सखियों चलत चलत बस यही कहा कि बारूद के गंध से कभो शांति के फूल ना खिलत। शांति सिर्फ हथियार डारे से ना आवत। शांति तो तब आवत है जब समाज के सबसे कमजोर मनई का सुरक्षा और न्याय मिलत है। यही कि तय जागरूक हुए, सजग रहे और हर चीज पे अपन निगाह रखे ताकि अच्छे से जीवन यापन हमें सभी के हो सके बिना कोनो डर के। और सखियो देखो भाई, जागरूक हुए की बात आवत है ना, तो हमारे घर परिवार में हमार बहनी लोग घर के रीढ़ के हड्डी मानी जाती। सवेरे से जब से उनके आंख खुलत है ना, तब से लेके सांझे तक घर परिवार से घरे बहरे के सब काम काज संभाला थी, सबके ध्यान रखा थी। हर छोटे बड़े हर बड़ी चीज पे अपन उनके निगाह रहा था और सबका सब सामान सही समय पे मिले, सबके स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सबके नीचे से ध्यान रखा थी। और यह ऐसने माँ तनाव चिंता और थकान हो आम बात है। मानसिक रूप से स्वस्थ और शांत रहे के खातिर योग एक बहुत बढ़िया माध्यम है। यही से जुड़ी जानकारी भी हम लाए हैं अपने सखियन की ताएं, महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग इकरे बारे में बताओ थे दीपशिखा बहनी जो उनकी योगाचार्य हैं। तो आवे इनसे और बढ़िया जानकारी ले जाए कि कैसे हम अपन मानसिक स्वास्थ्य ठीक रख सके थे और स्वस्थ रह सके थे।
1: नमस्ते प्यारे श्रोताओं, मेरा नाम है दीपशिखा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका नाम है महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग। एक ऐसा विषय जो हर घर में आम है लेकिन इस विषय पर बहुत कम बात होती है। महिला मतलब सबकी देखभाल करने वाली बेटी, पत्नी, माँ, बहन, सबका ख्याल रखते रखते वो अक्सर खुद को भूल जाती है। आज का कार्यक्रम सभी प्यारी महिलाओं के लिए है, इसलिए चाय का कप हाथ में लीजिए, आराम से बैठिए और सुनिए कि कैसे 10 मिनट का योग आपके मन के बोझ को हल्का कर सकता है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं घर परिवार, करियर, समाज सभी क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। सुबह उठते ही बच्चों की तैयारी, पति का खाना, घर का काम, ऑफिस की जिम्मेदारी और बीच बीच में अपने स्वास्थ्य की भी चिंता। ऐसे में महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल नजरअंदाज हो जाता है। क्या आप भी महसूस करती हैं? दिन भर तनाव, रात को नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना या कभी कभी बेवजह उदास होना। अगर हाँ तो आप अकेली नहीं हैं। आजकल की तनाव भरी दुनिया में ये सभी समस्याएं आम हो गई हैं और ऐसे में योग एक रामबाण के रूप में काम करता है। योग न सिर्फ शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मन को भी शांति देता है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे, पहला, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, दूसरा, योग कैसे मदद करता है और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कुछ ऐसे योगासन और प्राणायाम जो आप घर पर ही बैठकर कर सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज की बात स्वयं आपके साथ साथ हर एक महिला के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए करते हैं सबसे पहले मन की बात और समझते हैं कि आखिर महिलाओं में तनाव सबसे ज्यादा क्यों होता है। साथियों, WHO की रिपोर्ट कहती है कि डिप्रेशन और एंजाइटी महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले दुगना होता है। कारण क्या है? पहला, हार्मोनल उतार चढ़ाव, दूसरा, दोहरी जिम्मेदारी, तीसरा, परफेक्ट बनने का प्रेशर और चौथा, नींद पूरी नहीं होना, पांचवा, सबसे बड़ा, बात ना कर पाना। जी हाँ, इसीलिए तो कहा मैंने कि आइए करते हैं मन की बात, क्योंकि महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या यही तो है। अपने मन की बात किसे बताएं? सबकी सुनते सुनते खुद की सुनना ही भूल जाती हैं। अगर आप भी कभी कभी थकान, चिड़चिड़ापन या रात को नींद ना आने से जूझती हैं तो आप अकेली नहीं हैं। इसका हल है योग। ये योग कैसे काम करता है? अब बात करेंगे बिल्कुल साइंस की आसान भाषा में। योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग मतलब जोड़ना, अपनी सांस को, अपने शरीर को, अपने मन को जोड़ना। जब हम तनाव में होते हैं ना तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। योग और गहरी श्वसन क्रिया से ये कॉर्टिसोल कम होता है और दूसरा, योग करने से सेरोटोनिन और डोपामिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। जी हाँ, जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। यही हार्मोन्स हमें खुश और शांत बनाते हैं। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि प्राणायाम 15 मिनट का, आधे घंटे की मेडिटेशन और एक घंटे की गहरी नींद जैसा असरदार होता है। तो बहनों, दवा की डिब्बी खोलने से पहले अपनी चटाई खोलिए। जी हाँ, अब सबसे जरूरी हिस्सा, मैं आपको 5 आसन और 2 प्राणायाम बताऊंगी जो आप रसोई में, बेड पर, बालकनी में घर बैठे ही कर सकती हैं। कोई मैट नहीं चाहिए, कोई ट्रेनर नहीं चाहिए, बस आप और आपकी गहरी श्वास। सबसे

पहले आसन का नाम है सुखासन। अब कैसे करेंगे? जमीन पर या कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। अब नाक से चार गिनती तक श्वासें अंदर, चार गिनती श्वास को रोकना है, और मुख से छह गिनती में पूरी श्वास बाहर। सोचिए सांस अंदर लेते हुए शांति आ रही है, सांस बाहर छोड़ते हुए आपकी सारी चिंताएं आपसे दूर जा रही हैं। फायदा, मन को स्थिर करता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव चिंता को भी कम करता है। तो मेरी सलाह में सुबह उठते ही सुखासन में बैठकर 2 मिनट का ध्यान अवश्य करें, आपका दिन भर का तनाव कम हो जाएगा। आते हैं दूसरे बालासन पर। कैसे करेंगे? घुटने मोड़कर बैठ जाइए, अब धीरे धीरे आगे की ओर झुके, छाती को जांघों पर टिका दीजिए, माथा जमीन से लगा हुआ, हाथ या तो आगे की ओर या फिर शरीर के बगल रख लें। ये बिल्कुल माँ की गोद जैसा है, सारा बोझ जमीन को दे देना है। फायदा, सर दर्द, थकान, ओवर थिंकिंग में तुरंत आराम। मेरी सलाह है, जब भी दिन भर में थकान महसूस हो, 2 मिनट का बालासन अवश्य करें, आपको राहत महसूस होगी। आते हैं बद्धकोणासन पर। जी हाँ, जिसे आप सभी तितली आसन के नाम से जानते हैं। कैसे करेंगे? बैठकर दोनों पैर के तलवे जोड़ लीजिए, घुटने को ऊपर नीचे कीजिए जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ा रही हो। फायदा, महिलाओं के हार्मोनल बैलेंस और पीरियड के दर्द में बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है, मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करता है। चौथा, विपरीत करणी आसन। अब कैसे करेंगे? दीवार के पास पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैर सीधे दीवार पर टिका दीजिए और हाथ शरीर के बिल्कुल बगल, 2 से 3 चक्र का अभ्यास। फायदा, पूरे दिन खड़े रहने से आपके पैरों में होने वाली थकान, सूजन, मन की बेचैनी सब दूर। मोनोपॉज और हॉट फ्लैशेस के लिए तो बेस्ट है ये। मेरी सलाह तो ये है कि जब भी सब कामों से मुक्ति मिल जाए, 3 मिनट का समय इस योग के लिए अवश्य निकालें। आते हैं पांचवे शवासन पे। कैसे करेंगे? सीधे लेट जाइए, हाथ पैर थोड़े खुले हुए, आंखें बंद, मन से बोलिए मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। फायदे की बात करें तो ये सबसे जरूरी आसन है। 3 मिनट का शवासन 1 घंटे की गहरी नींद के बराबर होता है, इसलिए इसे कभी भी स्किप ना करें। अब बात करते हैं प्राणायाम की। जी हाँ साथियों, क्या आप सभी जानते हैं कि प्राणायाम करने से 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं? हमारे प्राचीन हठ योग के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। तो ऐसे ही बहुमूल्य प्राणायाम के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला प्राणायाम, नाड़ी शोधन या फिर अनुलोम विलोम। कैसे करेंगे? सीधे बैठिए, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद कर लीजिए, बाएं नाक से श्वास लीजिए, फिर दोनों नासिका को बंद करते हुए श्वास रोकिए, फिर बाएं नासिका को बंद करते हुए दाहिने से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। फायदा, दिमाग के दोनों हिस्सों को बैलेंस करता है, डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है, आपकी चिंताओं को भी कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे? आंखें बंद, दोनों कान को अंगूठे से दबा लेना है, लंबी सांस लें, मुख को बंद करते हुए की आवाज करें। जी हाँ, ठीक जैसे भौंरा करता है। फायदा, ये जो आवाज है ये बिल्कुल सीधे आपके दिमाग को शांत करती है, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन 30 सेकंड में कम। अब जीवन शैली को बदलने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स। जी हाँ, तो योग के साथ साथ 3 आदतों को अपने जीवन में जोड़ लीजिए। पहला, अपना समय फिक्स करें, हफ्ते में 1 बार 30 मिनट अपने लिए बिना किसी गिल्ट के, चाहे वो किताब पढ़ना हो या फिर बस छत पर बैठे रहना, अवश्य करें। दूसरा, बात करें, मन हल्का करने की सबसे बड़ी दवा है बात करना। अपनी सहेली, माँ या फिर अपने किसी के साथ अपनी बात को जरूर शेयर करें। और अगर आपको ज्यादा डिप्रेशन लगे तो डॉक्टर या फिर काउंसलर से सलाह जरूर लें, चुप ना रहें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, नींद को पूजा माने। रात को सोने से पहले 30 मिनट मोबाइल बंद। स्क्रीन की ये जो नीली रोशनी होती है ना, ये आपकी नींदें चुरा लेती है, इसलिए याद रखिए, आप स्वस्थ रहेंगी तभी ये घर स्वस्थ रहेगा। अपना ख्याल आपका स्वार्थ नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। तो बहनों, आज से संकल्प लीजिए।

0: रोज सिर्फ 10 मिनट आपके लिए। योग यही तो सिखाता है हमें। जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर है, बस सांस के साथ उसे जगाना है। तो आज के इस सत्र को हम 3 लंबी गहरी सांसों के साथ खत्म करेंगे, ये उम्मीद करते हुए कि आप सभी सखियां हमारे साथ इस अभ्यास को दोहरा रही होंगी। तो मेरे साथ करिए, एक लंबी गहरी श्वास अंदर, श्वास को रोकिए और धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। इसलिए बहनों, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे अपनी माँ, बहन, सहेली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य हर एक महिला का अधिकार है। अब मैं दीपशिखा आप सभी से विदा लेती हूँ। आपका और आपके अपनों का ख्याल रखिए। आप खुश रहेंगी तो पूरा घर रोशन रहेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।
1: उम्मीद है कि जानकारी जो दीपशिखा बहनी दी ही नहीं, हमें सगरू सखियन का जरूर नीक लाग हुई। और भाई देखो, जानकारी तो बहुत बढ़िया रही है और एक एक फायदा हमारे सखी लोग जरूर उठावे, योग अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें, और ताकि हमें सभी नीचे से स्वस्थ रह सकी और खुश रही। और देखो सखियों, बात का तो और आगे बढ़ाव है, लेकिन तनी रुक के।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
6: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
5: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
6: जी हाँ, और वो है योग।
5: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
6: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
5: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
6: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
5: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
6: योग करिए, निरोग रहिए।
1: सखियो देखो भाई, जानकारी तो हमारे सखी लोग सब सुने हुई है और नीक भी लाग हुई, और लेकिन अब बारी आवत है मनोरंजन के, तो अपने नियम कुछ गीत को नहीं भी हो जाए तो आवे सुने नूतन पांडे की आवाज में ईगो नहीं।

सखियों पूरी उम्मीद है कि गौनई नूतन पांडे की आवाज में मेरे सखियन का नीक लाग हुई और अब चले खे घरेलू सुझाव हो रही जिमन हम बात करब सौंदर्य के तो जिमन हम बताए रहे कि हम अलसी के बात करब सखियों अलसी त्वचा की ताई कोनो वरदान से कम ना हो ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट और लिग्निन से भरपूर त्वचा का अंदर से ही नमी देत है झुर्रियन का कम करत है और मुहासन का भी कम करत है और साथ ही चेहरे पे प्राकृतिक चमक लावत है तो एक फायदे के बाद देखो कीन जाए सकियो तो ई जो है एमन जो मौजूदा फैटी एसिड होता है उरूखा से पन से बचावत है और त्वचा मुलायम और कोमल बनी रहत है साथ ही ई जो है जो है बुढ़ापा आवत समय जैसे एज उम्र बढ़त है तो लाइन पड़े लागत है झुर्री पड़े लागत है ऊ का कम करे में काफ़ी मदद करत है साथ ही जो मुहासा और सूजन होत है ई इमन सूजन रोधी गुण त्वचा के जलन का शांत करत है और जो निके तेल के उत्पादन का नियंत्रण करने में काफी मदद करत है अब बात आवत है कि एका इस्तेमाल हमें सभी कैसे करी तो सखियो एका जो है हम अपने डाइट में भी शामिल कर सके थे और चेहरे पे लगाए के दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सके थे आहिर आहार में शामिल करे के तय एक चम्मच पिसी हुई अलसी का रोजाना गर्म पानी या स्मूदी या दलिया या दही में मिलाई के खा सके थे और अलसी के जो है फेस मास्क एक चम्मच अलसी का पानी में उबाल के गाढ़ा जेल बना लिए ठंडा होए पे एक चेहरे पे लगावे और सूखे के बाद धो लिए अलसी के तेल भी है रूखी त्वचा के ताएं आप शुद्ध अलसी के तेल के कुछ बूंदे चेहरे पे मालिश करें और एक जो है ऐसे चेहरे पे बढ़िया चमक आवत है सखियो जो है हम जो है फेस जेल भी एका बनाओ जा सकते थे तो एक छोटा चम्मच अलसी के बीज और एक कप पानी का कोनो बर्तन में रख के 10 से 15 मिनट तक उबाल लिए और जब गाढ़ा जेल जैसा तैयार हो जाए तो आँच से उतार के कोनो सूती कपड़ा या छन्नी से छान लिए जेल का ठंडा होए पर एक अपने चेहरे पे लगाए 15 से 20 मिनट लगाए के गुनगुने पानी से या ताजे पानी से चेहरे का धो लिए फेस पैक के ताए एक 2 चम्मच अलसी के जेल लिए एक चम्मच शुद्ध शहद मिलावें एका चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरीके से लगावें और 15 मिनट बाद सादे पानी से एका धो लिए इससे त्वचा मुलायम और चमकदार बनत है और अलसी और चावल के आटे के भी फेस पैक बनाओ जा सकता है इमन अलसी के बीज का पानी में उबाल के जेल बनाओ है और इमें एक चम्मच चावल के आटा और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाओ है एका चेहरे पे 15 से 20 मिनट लगाए तक छोड़ दिए और सूखे के बाद हल्के हाथों से रगड़त भर एका जो है धो लिए साफ कर लिए और देखो बचा हुआ अलसी का जेल जो है जो बचा है उका कोनो टाइट वाले कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दें तो 7 दिन तक एक रखा जा सकता है बाहरी रूप से लगावे के साथ साथ प्रतिदिन हम तो यही कहा कि एक चम्मच भुनी हुई अलसी का सेवन करें त्वचा का अंतरूरी रूप से ई पोषण देता है और रंग निखारत है

और देखो भाई थोड़ा सावधानी की बात की, चेहरे पर सीधा पाउडर लगाओ इसे बचे, कैसे यही त्वचा का खुरदुरा कैसा गत है, हमेशा उबले हुए जेल का ही इस्तेमाल करें। आपके त्वचा कैसन है अगर संवेदनशील है तो उपयोग से पहले कोनो जगह पहले लगाए के देख लिए। और देखो भाई अब फिर एक बारी होता है कि एक गौ नहीं फिर अपने अंग नियम हो जाए, तो आवे ब्यूटी चक्रवर्ती की आवाज़ में सुने एक गौ नहीं।

0: सखियों पूरी उम्मीद है कि कार्यक्रम और ईगो नहीं आप सभी का बहुत निक लागू है, तो अपन प्रतिक्रिया हमें जरूर दे रही हैं, हमें रहा है आपके प्रतिक्रिया का इंतजार। और भाई देखो हर चीज समय से निक लागत है और घड़ी भी इशारा करत है कि कार्यक्रम से भी विदा लेके समय हो ही गया है, तो यही वादा के साथ है कि अगले अगना कार्यक्रम में नीक नीक गीत गुनई और जानकारी के साथ फिर भेंट हुई। तब तक किताए वंदना का देर मती नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी हमारी बहनें सुन रही थीं कार्यक्रम अंगना। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। दोपहर के 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, न कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
1: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
1: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
1: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
1: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
1: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
1: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहाँ तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक

0: मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहाँ कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800440559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण
2: जहाज पर नौकरी करता है,
1: जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है, कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। आज का हमारा, जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: आप को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा कंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन

सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा।

उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई।

कभी-कभी न मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह-तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। यह देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, यह तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे-छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते-चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।

0: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम। शीर्षक है बिन्नी का सपना।
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
0: बिन्नी का सपना।
2: अरे तुम्हें क्या हुआ?
3: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
2: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
3: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
3: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
4: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, और अब आइए सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: सखियो अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
1: जी, अभी हाँ छोड़ा है मैंने। अभी मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है
1: जी, 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं, अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं वैसे तो जरूरत नहीं, उससे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है तो बच्चों में जो संस्कार पढ़ते हैं, खास तौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी अभी स्टार्ट किया है, हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है तो उस पर चढ़ना ही अपने आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
0: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
0: निकिता जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए, तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
0: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक कहरवार बात कर रही हूँ।
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से कॉल लगाया? अपने शहर का नाम बताइए।
1: बुगावड़ी।
0: बुगावड़ी?
1: यस मैम।
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम। वही तहसील खुराई पे साइड है बुगावड़ी।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गाँव।
1: Yes.
0: तो आपका जो गांव है वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से आठवीं क्लास तक है।
0: आठवीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही तो है पथरिया, तो वहीं पर पढ़ती हैं।
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: साइकिल 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने?
1: नहीं मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है?
1: या मैम।
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और

0: कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी चार बहनें हैं और एक भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं?
1: हाँ मैम।
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: मैम अभी एक साल पहले।
0: एक साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं?
1: यस मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज के फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और साथ में जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम मेरा गांव शिवगढ़ के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो शिवगढ़ है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में

0: घूम सकते हो।
1: और आपके शौक क्या क्या हैं?
0: मैं मुझे सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना और मतलब सॉन्ग को गाना। मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
1: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहाने है।
0: प्रतिभा रहाने जी, आप कहाँ रहती हैं? किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योग आश्रम नाम से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलंटियर जाती हैं?
1: हाँ।
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: हाँ, वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह की सेवा यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है?
1: हाँ हाँ।
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: हाँ, तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: जैसे हेल्थ के लिए तो, फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ किस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए, तो उसके लिए योगा

0: थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
1: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
0: हाँ, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, तो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते तो अंदर से खुश होते हैं।
1: तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है।
0: हाँ।
1: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में क्या हो गया, ये सॉन्ग सुनना है।
1: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा। क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-24662। एक और नंबर है 28687-0288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 400-24662। एक और नंबर है 28670-288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि

नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसते खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षक

दोस्तों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध से बिखर गई। क्या करूं बिट्टू, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूँ। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मन स्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।

0: तो नसाए कभी ये दुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभव ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फपक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहाँ, सिर्फ अपने

अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ।

किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन के चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप न तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 2.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए। और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है। पर माँ, मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही है। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहाँ जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

ने रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन मिल गया तुमको। अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला? क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

पास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ में कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मिले धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा का फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तलखी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूँ, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को? कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसके प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मन को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल नहीं होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है।

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं।

साथ हम सब हैं, जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको ना जाने के अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
0: कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: पर बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहाँ हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड ऑलरेडी, इज इन विज्ञान भवन एंड इज इन अ सेपरेट हॉल वेयर इज हैविंग अ टॉक, अ डिस्कशन विद द बेनिफिशियरीज हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड टुडे फ्रॉम दिस दिस योजना, that is the Viksit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in, say, in a short while, he'll be entering the plenary hall, wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses. And of course, they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about, about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ। एंड टुडे इनफैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
2: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस, व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। व्हाट अ एनकरेजमेंट टू द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस। एंड देन द transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक

अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित

0: लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में और हाँ बोलो इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं पहले ही हो चुके और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी कितने युवा उससे लाभान्वित हो और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
1: पीपल विल फील सिक्योर ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग बट let the this our prime minister is given them an assurance that the government is there with you that is what he says in this motto no rozgar ya karobar साथ है भारत
0: सरकार जी और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी
1: एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज जिनको पहली बार नौकरी मिली
0: है
1: दिस कंपोनेंट फोकसेस डायरेक्टली ऑन द यंग इंडिविजुअल्स entering the formal workforce for the first time and the eligibility is new employees joining an EPFO that is the Employees Provident Fund Organization registered establishment with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh and the worker must not have any prior EPFO history before August 1st 2025 so these are the conditions and then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage cap to a maximum of rupees 15,000 right and then the disbursement will be in two stages that is through the direct benefit transfer DBT through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification first installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees and the second one after another 6 months so after the completion of 12 months they'll be getting a total of 15,000 rupees and the employer also of course he also gains something every time he brings in a new worker he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in so obviously when these benefits are there even the employers they'll try to bring in as many people as possible and even the so that more and more people get employment and they also the employer also earns the employees also earn
0: बिल्कुल सभी को फायदा है बिल्कुल फायदा है और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है
1: yes. See, and then, one more thing. See, The Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is Job Fairs, which is being held today across India through the National Career Service.

0: portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you're reasonable, you're well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the Prime Ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 साल.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज़ सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
0: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम, एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं ना? लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ
0: है. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got their employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा

0: उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है.
1: yes.
0: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1,00,000 रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए. yes. तब yes. ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे. और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स. That is what it says now. The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा.
1: yes.
0: ये बहुत
1: yes.
0: जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना. जी.
1: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रीति, इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, यू नो, जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. I mean, we have advanced. They have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top.
0: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
1: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग देयर जॉब्स. दे आर ऑल कीपिंग देयर फोन्स रेडी ऑन द टेबल. सो एज सून एज द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन, इट विल कम टू देयर फोन दैट दे हैव गॉट देयर लेटर.
0: An amount will be transferred.
1: Yeah.
0: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है. और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो, दिस इज द एलिजिबिलिटी इज establishments registered with the EPFO that successfully generate net new employment.

0: to qualify, smaller firms fewer than 50 baseline workers must hire at least 2 new employees, while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah, and then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुनानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके ही इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज And he'll be so happy in his heart that I'm getting a job and our Prime Minister has given this job to me. So, and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan. And they'll be dreaming, you know, I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the... Short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button, the magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way. Is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ

0: आप उठा सकते हैं.
1: And see the dais. How many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the plenary hall and the dais. Just behind the dais, there's a beautiful board, and on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given. All the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his role as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है. नहीं,
1: दैट्स ट्रू. एंड यू नो आई अटेंडेड वन ऑफ दीज डेज, यू नो, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and he will see that you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So you know, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
0: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा. तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में. बच्चों को लगता था परीक्षा आ रही, इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना. तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से.
1: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable, the young people also feel comfortable, but not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even, during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and mingles with them, and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and take care.

0: He listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है
0: yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी
0: yeah. है ना? And see, who expected that 3.5 crore people are going to get jobs in India? Right? The implementation has already started. 15 lakh have already got it. Today it will be confirmed for them through the press or that button by the Prime Minister. And then over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती है तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
0: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know. And just see the people over here. You can see the people, they're all seated waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: Yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज. ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेस, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन. ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बोके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज. That will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, he has entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: Duniya ke sabse lokpriya neta, mananiya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji ka.
3: Ek baar
2: zor taaliyan ho jaye. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन.
0: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the desk.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: फ्लैंक बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑन हिज राइट एंड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू हिज लेफ्ट.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.

0: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
0: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
2: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविय जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
3: And now the welcome remarks.
0: जोरदार तालियां हो जाएं।
3: By Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी,

0: परसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में

0: जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
1: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
2: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
1: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3 करोड़ 50 लाख से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन

0: नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
1: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
3: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
4: स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कदमों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
5: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
3: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
5: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
6: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
5: तालियों की
6: गड़गड़ाहट
5: रुकनी नहीं चाहिए।
6: डाइस पर
7: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2,00,000 लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत

के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में,

और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे

युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो,

कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है, और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक

अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो, या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी,
सर्विस की क्वालिटी

0: क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं, हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dream is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे

0: हैं इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे वे प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू ओबी टीम इंचार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
2: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण सुन रहे थे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 6:33 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के, इसमें सुनिए अमरनाथ यादव और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: बालेश्वर यादव और साथियों की आवाज में भी हम सुन रहे थे बिरहा, और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम गूंजेश्वर गांव के।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजेश्वर गांव के। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं, 6:45 और 7 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
2: या हमें

0: ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: पंचो जय हिंद। देखा पंचो, ऐसा ही तो अपने घड़ी में 6:47 होता है। अब आज बात करब अपने सभी ना वह चीज पर, जवन चाहे राजा हुए चाहे फकीर हुए चाहे जे हुए, अमीर हुए या गरीब हुए, किसान हुए या जवान हुए, सबके पास वो बराबर रहा है। सोचा काओ, समझ गए बाला? पंच हमारा बहुत समझदार है। वह है समय। समय सब किताए एकदम निश्चित है, वही 24 घंटा सब किताए है। अरे रहीम जी एक बात कह रहे, मैं याद आई गया, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। यानी मतलब समय के फायदा उठा लिया तो सबसे बड़ा फायदा, अब अगर समय के फायदा चूक गया, अरे भैया तो सबसे बड़ी चूक। कहा ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। यानी कहा के मतलब, अगर कोनो भी काम अपने सभी समय से ना कह पाई तो समझ लिया कि फिर गड़बड़ है। काहे से, जब घड़ी के टिक टिक का अपनी तरक्की का अपने सभी आवाज बनाओ ना, तो याद रखा कि अपने सभी तरक्की करबे। और कहा का भी गवाबा है कि भगवान के समय बहुत बड़ा तोहफा अपने सबका दिया है, समय रूपी तोहफा ही भगवान दिया है। ये लिए अपने सभी का एक कमा के चाहिए। और एक चीज और बता दी कि अपने सभी कोनो भी काम करते ही पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान है कि नहीं। कहा गया भाई अर्जुन भाई वह रहे और उनके वह बाणो रहा, लेकिन काव कह पाए बिलनी लूटे गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। यानी कहा का मतलब है अपने सबका कि समय के बाद समय पे करे का है। और जो समय वाली बात है आपको बताई के तो सदुपयोग आप करिए, लेकिन एक खास खुशखबरी आपकी तय लाई। हमारे किसान भैया सोचे तो आज का बात है समय की बात करता है, अरे समय की बात यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 23वीं किस्त काल आए, यानी 20 जून का। और अपने सभी याद रखिए ना, डायरेक्ट DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अपने करोड़ों किसान भैया के बैंक खाता में सीधे 2000 रुपया जाए। किस्त के पैसा आपका ही पता है कि आपके खाते में जैसे ट्रांसफर हुई, या का जा सकता है। आपके पास कई तरीका है। पहला तरीका यह है कि जो अपन आधिकारिक पोर्टल है PM किसान पोर्टल, पंच भैया जानते ही है PM किसान पोर्टल, वो पर जाके अपन स्टेटस चेक कर सकी थी। दूसरी चीज हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपका किस्त से जुड़ी कोनो समस्या है तो PM किसान हेल्पलाइन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। एक बात आपका ध्यान दिए जरूरत है पंच भैया कि पैसा प्राप्त करते ही आपके आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक हो चाहिए, ये बात विशेष कह के याद रखे रहा। और यह है इतना ना है, ये करे साथ साथ EKYC प्रक्रिया जो नहीं है ना उसका पूरा हो बहुत अनिवार्य है। आप EKYC पेज के माध्यम से घर बैठे कह सकते हैं, PM किसान पोर्टल खोलिए पर EKYC दिखा तो ऊपर आप आराम से कह सकते हैं। अपना ना कह पाओ था जन सेवा केंद्र पर जाके करा लिया, नहीं बाद में आप कहा कि आपके पैसा ना आया हुआ। हाँ कुछ पंच भैया का अगर कोनो दिक्कत होती है तो अपने कृषि भवन पर जाए, आप चाहे जहाँ हैं इनानका अकबरपुर में है या अपने अयोध्या जिला में है या गोंडा में सुनता है, जहाँ भी सुनता है अपने कृषि भवन में जाए। उपनिदेशक कृषि भैया रहते अपने अयोध्या में, तो डॉक्टर PK कनौजिया जी हैं, हमारे उनसे व्यक्तिगत बात भी रही, हम गा रहे रिकॉर्डिंग के रहे। तो मैं बताओ तो भैया ये कौनों भी समस्या पंच भैया सीधे आते और बिल्कुल लोग निदान होते और पंच भैया से पूछे रहे। हम तो लाख कार्यक्रम आपका रेडियो रिकॉर्ड के बजाय सुनाई थी, सब बताओ थे कि भैया यहाँ जब आई थी ना तो 24 घंटा में निदान और तुरंत बता दिए थे कि कितनी देर में हुई का हुई। हाँ बस अपन आधार कार्ड लेके आपका तुरंत कृषि भवन पहुंच जाएगा है। समय से पहले कैसे कुछ पंच भैया कैसे हुआ था कि उनके पिताजी पावत रहा थे, लेकिन वो खत्म हो जाते तो उनके नाम वरासत जो दर्ज हुआ था तो फिर उनके बारी होती। यानी आपका कोनो भी समस्या है तो सबसे पहले अपने कृषि भवन चला जाए, नहीं तो जो बताएं PM किसान हेल्पलाइन यहाँ है वो पर जाके आप संपर्क कर सकते थे, बात करें। और आपके सम्मान निधि आए कैसे, किसान के सम्मान आए। और यह अपने सरकार के नीति है कि किसान हमेशा मुस्कुरात रहा है, खूब खुश रहा है। कैसे, जब किसान हंसे ना तो समझ लिया गांव हंसे, और गांव हंसे तो पूरा देश हंसे। लेकिन यह क्षेत्र के लिए धान के उन्नत प्रजाति और उनकी कौन कौन विशेषता है, यही विषय पे एक भेंटवार्ता लेके आई कि अपने सभी धान के नर्सरी जा रहा था ही, तो कौन डारी कौन

0: डायरी एक बारे में बताती हैं डॉक्टर सिपरा यादव और उनसे बतवाती हैं सरस्वती पाठक। चला सुना जाए।
1: श्रोता पंचो अपने थरिया माँ चावल जोन हुआ थे चावर या भात कह लो आप वह का बड़ा महत्व है और अपने देश माँ चाहे पूरब हुए चाहे पश्चिम हुए चाहे उत्तर और चाहे दक्षिण चावर के बहुत महत्व है चाहे वो पूजा पाठ में इस्तेमाल कीन जात हुए और चाहे खाए पिए माँ। धान के खेती जब तक ना कीन जाए तब तक अपने थरिया माँ चावर कहाँ से दिखाई पड़ी। धान के खेती कैसे कीन जाए कैसे कि हर क्षेत्र के बात अलग अलग रहा है हर क्षेत्र के मिट्टी अलग हुआ है सिंचाई के व्यवस्था अलग हुआ है तो वही आधार पर अगर हम लोग प्रजाति के चयन कीन जाए तो आपन खेती बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। तो ऐसे ही जानकारी आज हम आप पंचन के लिए लेकर आयन है। विषय है इस क्षेत्र के लिए धान की उन्नत प्रजातियां एवं उनकी विशेषताएं और यहाँ पर बातचीत करेगता हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सहायक प्राध्यापक शस्य विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से शिप्रा यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: धन्यवाद मैडम।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता पंचन का आप बतावा जाए कि जो उन्नत प्रजातियां हैं उनके का महत्व हुआ था और काहे उनके चयन कीन जाए।
2: जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और आज हम विशेषकर बात कर रहे हैं अयोध्या जनपद की। तो अयोध्या जनपद में जैसे यहाँ पे जो हमको बारिश प्राप्त हो जाती है वो लगभग 900 से 1200 मिलीमीटर तक हमको बारिश मिल जाती है और यहाँ की जो मिट्टी की भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है और विभिन्न प्रकार की मिट्टी होने के कारण जो धान की खेती है वो बहुत अच्छी यहाँ पे फसल उत्पादन अच्छा पाया जाता है। पर कभी कभी देखने में ये मिलता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कुछ समस्याएं होती हैं जैसे कहीं पे पानी की कमी है कहीं पे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है या फिर कहीं पे जैसे बहुत ज्यादा फसलों में रोग लग जाते हैं। तो उसके आधार पे अगर किसान भाई अपना फसल के किस्मों का या प्रजातियों का चयन करें तो ये इससे उत्पादन जो है वो बहुत अच्छा होगा और उनको जो है वो लाभ उससे मिलेगा।
1: तो कौन कौन बिंदु है जिसके आधार पर किसान भाई प्रजातियों का चयन करें और कौन कौन प्रजाति के कैसे चयन करें।
2: जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर जहाँ पे पानी की कमी है जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था नहीं है और बारिश भी मान लीजिए केवल बारिश का पानी उपलब्ध है तो ऐसे जगहों पे किसान भाई जो कम अवधि की हमारी किस्में हैं प्रजातियां हैं उनका अगर चयन करें तो उससे क्या होगा कि हमको पानी की कमी के पे भी हम अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकेंगे और फसल भी हमारी जल्दी तैयार हो जाएगी। उसके लिए जैसे कि हमारा नरेंद्र धान 94 है और हमारा IR 64 सब एक वैरायटी है सहभागी धान है जो अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित है इसको हम ले सकते हैं। शुष्क सम्राट एक प्रजाति है जो कि कम पानी में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देती है। तो इस तरह से हम जहाँ पे पानी की व्यवस्था कम है या सिंचाई कम है जो सिंचित क्षेत्र नहीं है वहाँ पे हम इनका चयन कर सकते हैं। उसके साथ जैसे जहाँ पे सिंचाई है मध्यम सिंचाई की व्यवस्था है तो मध्यम अवधि की जो हमारी जो प्रजातियां हैं वो जब से लगभग 130 से लेकर 140 दिन में वो तैयार हो जाती हैं ऐसी प्रजातियों का चयन हम कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे क्षेत्र में लगाई जा रही है नरेंद्र धान 2064 नरेंद्र धान 2065 वैरायटी है। उसके अलावा सरजू 52 जो है वो बहुत ही ज्यादा लगाई जाती है और जो हम कहें अगर बाजार में उसका मूल्य भी बहुत अच्छा मिलता है और मांग भी अच्छी है तो इस वजह से सरजू 52 लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको उसकी उत्पादन प्राप्त हो जाता है किसान को। तो ये एक मध्यम मतलब श्रेणी की वैरायटी है और इसको अगर हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था है तो हम इसको लगा सकते हैं मध्यम अवधि में है। अब अगर जैसे हमारे पास जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है हमेशा पानी भरा रहता है उसके लिए किसान भाई अपना जैसे कि जलप्रिया है प्रजाति जलमग्न है जल लहरी है और NDGR 207 किस्म है उसको वो अच्छा सफलतापूर्वक लगा सकते हैं। ये बाढ़ की स्थिति में भी अच्छा उत्पादन देती है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि कुछ किसान भाई बाजार के मूल्य के हिसाब से कुछ अच्छा धान लगाना चाह रहे हैं जैसे सुगंधित प्रजातियों का लगाना चाह रहे हैं तो उसमें वो पूसा नरेंद्र काला नमक जो है काला नमक जो है हमारे उत्तर प्रदेश को जीआई टैग भी मिला हुआ है और काला नमक में अच्छा बाजार मूल्य भी मिल जाता है। तो पहले काला नमक की जो प्रजातियां थी उसमें ऐसा था कि काला नमक जो है वो बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जो है कुछ उन्नत किस्म आई है जिसको मैं पूसा नरेंद्र काला नमक एक

0: पूसा, सीआरडी, काला नमक दो, ये थोड़ी सी बौनी किस्म की प्रजाति है जिसमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है, फसल खराब भी नहीं होती है और बाजार मूल्य भी बहुत अच्छा मिल जाता है सुगंधित की श्रेणी में। इस तरह से किसान भाई अगर अपना फसल के लिए अपने भौगोलिक स्थिति के हिसाब से चयन करें तो उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: शिप्रा यादव जी, जैसे कुछ प्रजातियां ऐसी हुई थी जो सरकार उपलब्ध करावती सरकारी हुई थी, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनी लोग वाले भी दिए थे, वहां प्रजाति अच्छी रहा थी और वे उत्पादन भी अच्छा दिए थी, तो हम चाहते कि हमारे सब श्रोता पंचन का उन प्रजातियों के बारे में भी बाजी बताई दो आप।
0: अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो जैसे कि गंगा कावेरी एक प्रजाति है, वो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है अपने क्षेत्र में। तो ये गंगा कावेरी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमको बाजार में जो है उपलब्ध हो जाती है और ये रोग प्रतिरोधक

0: कारी हुआ थी, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनी लोग वाले भी दिए थे, उमा प्रजाति अच्छी रहा थी और वे उत्पादन भी अच्छा दिए थी, तो हम चाहते कि हमारे सब श्रोता पंचन का उन प्रजातियों के बारे में भी बाजी बताई दो आप।
1: अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो जैसे कि गंगा कावेरी एक प्रजाति है, वो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है अपने क्षेत्र में। तो ये गंगा कावेरी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमको बाजार में जो है उपलब्ध हो जाती है, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी अच्छी है, दाने की गुणवत्ता अच्छी है, और 30 से 45 कुंटल प्रति एकड़ के दर से हमको इसका उत्पादन मिल जाता है। इसके अलावा दामिनी गोल्ड नाम की प्रजाति जो है वो हमारे बाजार में उपलब्ध है, इसमें भी आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता मिल जाती है और पकने पे अच्छा खिला चावल मिलता है, और इसका जो हम कहें उत्पादन तो 6 से 7 टन का प्रति हेक्टेयर के दर से हमको इसका उत्पादन जो है मिल जाता है। उसके अलावा एक बहुत अच्छी वैरायटी है स्टार पीबी 1509 करके, ये भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है और इसका बाजार मूल्य जो है वो किसान भाइयों को जो है अच्छा मिल जाएगा। अगर हम हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड आजकल कुछ किसान भाई हैं जो हाइब्रिड पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं पायनियर कंपनी की 28P67 वैरायटी है। थोड़ा इसमें फंगस की दिक्कत आती है, तो आपको फंगस का कीटनाशक डालना आवश्यक है, पर वैरायटी बहुत अच्छी होती है, दाना टूटने की समस्या बिल्कुल नहीं आती है, और इसको बहुत ही अच्छे से लगाकर और अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई।
0: किसान भाई का अगर निर्णय लिए हुए कि कौन प्रजाति का हम लगाई, तो कम मिट्टी के जांच कराई के पता लग सकता है उनका कि कौन प्रजाति ठीक रहे?
1: हाँ बिल्कुल, अगर जैसे हम धान की ही बात कर रहे हैं या कोई भी फसल लगा रहे हैं, अगर लगाने से पहले जो हमारे अलग अलग जनपद हैं, हर जगह पे किसान विज्ञान केंद्र जो है उपलब्ध हैं, वहाँ पे मिट्टी की जांच अगर करा लें तो उससे हमें पता चल जाता है कितना पोषक तत्व जो है वो हमारी मिट्टी में उपलब्ध है और कितना हमको डालना है, जिससे उनकी लागत भी कम होगी और उत्पादन भी अच्छा उनको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र में अगर नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो किसान भाई बहुत ज़्यादा सांभा मंसूरी हो गया, सरजू 52 हो गया, एक आता है नाटी मंसूरी या फिर छोटी मंसूरी नाम से, वो भी दाने छोटे होते हैं पर बहुत ही खाने में अच्छा खिला चावल होता है, तो ये सब प्रजातियां आंख बंद करके किसान भाई जो है वो ले सकते हैं। इसका उत्पादन भी अच्छा होता है और इससे बहुत ज़्यादा समस्या भी नहीं आती है, जैसे जो विभिन्न रोग है, जैसे भूरा मुँह का रोग हो गया, जो झुलसा रोग हो गया, जो बहुत ज़्यादा धान में परेशान करता है, उससे भी ये प्रतिरोधक क्षमता रखती है।
0: कुछ प्रजाति जो साधारण हुई थी, ये जो उन्नत प्रजातियां हैं, का इनके लगावे में यहाँ ज्यादा सावधानी रखे का चाहिए, चाहे वो बीज उपचार के बात हुए या खरपतवार नियंत्रण के या उर्वरक के प्रबंधन के, का ऐसा तो नहीं है कि प्रजातियां उन्नत ही तो वहाँ ज्यादा खाद डावे है या ज्यादा उर्वरक डावे है?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम जो भी प्रजाति ले रहे हैं, अगर हम उन्नत प्रजाति लेते हैं तो उसमें ज़्यादा फसल उत्पादक या फिर अपना पेड़ खराब नहीं होता है, उसकी जो है संभावना कम हो जाती है। जबकि अगर हम साधारण बीज लेते हैं तो उसमें बीज के खराब होने की ज़्यादा संभावना होती है। और अगर हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले, जैसे अभी हमारा जो है ये पौध लगाने का समय चल रहा है, अगर किसान भाई अपना पौध लगाएं और 20 से 25 दिन बाद उसको जब नर्सरी को जब रोपाई करें अपने खेत में, तो उससे पहले बस 2-3 बातों का ध्यान रखें। जैसे कि पौध को लगाने से पहले ऊपर से थोड़ा तोड़ दिया जाता है, तो एक स्टेम बोरर नाम का जो हमारा रोग होता है उससे हम बचाव कर सकते हैं। और जब पौधों को लगाएं तो उचित दूरी पर लगाएं। खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे ही हम रोपाई कर देते हैं, उससे 1 से 2 दिन बाद ही हमको तुरंत ही खरपतवार नियंत्रण, जैसे कि प्रिटला क्लोर आता है बाजार में, उसको हम 0.75 ग्राम के हिसाब से उसको हम छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद 20 से 25 दिन बाद बाजार में नॉमिनी गोल्ड नाम से खरपतवार नियंत्रण जो है वो उपलब्ध है, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हम खरपतवार से भी बच सकते हैं और हमारा जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा हो सकता है।
0: एक बात हम आपसे और जानना चाहब कि ये जो उन्नत प्रजातियां हैं, इनके बाजार में मूल्य का बढ़िया मिलते हैं? कैसे कि कुछ पंच भाई सोचते हैं कि हाँ अपने खाए पिए एक साथ ही उनके कुछ स्रोत हो जाए कमाई के भी, तो बाजार में का इनके अच्छा मूल्य मिलता है?
1: अगर हमारी उन्नत प्रजाति लगा रहे हैं तो जैसे अलग अलग हमारी प्रजातियां होती हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं
0: तो
1: होती
0: हैं। कुछ प्रजातियों के बारे में बता दीजिए जाए जिनके बाजार में बढ़िया मूल्य मिले।
1: जैसे हम अभी सरजू बावन की बात किए, उसका भी चावल जो है वो बहुत अच्छा पतला होता है। जैसे कि अभी हमने बात किया नरेंद्र धान 20/64, 20/65 का, तो इस ये क्या है मोटा धान होता है और इसको हम ज्यादातर बाजार में इसकी बिक्री होती है, जिससे कि चूड़ा और लाई जो बहुत उसको बनाने के लिए इसका

0: उपयोग किया जाता है। कुछ हमारा जैसे हमने प्राइवेट किस्में बताई, जैसे कि ये कावेरी हो गई, दामिनी हो गई, तो इसका जो चावल होता है बहुत पतला खिला हुआ होता है, तो इसको भी जितना पतला खिला हुआ चावल है उतना ही लोग कहते हैं खाने में अच्छा होता है, तो उसके लिए भी बाजार मूल्य जितना खिला हुआ और पतला चावल होगा उतना ज़्यादा खाने में उसका मूल्य अच्छा मिलेगा। और जो अलग अलग किस्में हैं, जैसे कि अलग अलग उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाई बनाने के लिए, चूड़ा बनाने के लिए, तो उसका अलग अलग जैसे कि प्रजातियाँ होती हैं, जैसे आपको बताया मैंने नरेंद्र धान 2064, नरेंद्र धान 2065 जो मोटी धान की वैरायटी होती है, उससे उसका उपयोग जो है उसके लिए किया जाता है, तो उसका भी मूल्य उसके हिसाब से मिलता है बाजार में।
1: चलत चलत हमरे पंच भाई से आप कहा चाहे वो जे धान के खेती के तैयारी किया है, नर्सरी उनके तैयार है या तैयारी करे के नर्सरी के या रोपाई करे के, उनसे चलत चलत आप कहा कहा वो?
0: बस हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि जैसे कि नर्सरी अभी लग चुकी है या लगा रहे हैं, उसके बाद फिर धान की रोपाई करेंगे, तो धान की रोपाई जो है वो लाइन से लाइन की दूरी पे लगाएं और एक उचित जो है वो दूरी पे, जैसे कि 20x10 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर लगाएं तो अच्छे उत्पादन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसके अलावा ध्यान रखें जब नर्सरी की रोपाई करें तो हमेशा जो हमारी पौध होती है उसको ऊपर से थोड़ा सा तोड़ के लगाएं, जिससे कि हमारे जो स्टम्प बोरर जैसे जो विभिन्न रोग हैं उसके उससे हमको बचाव मिल सके। उसके अलावा हम थोड़ा सा कि जैसे खरपतवार नियंत्रण पे बहुत ज़्यादा ध्यान लोग नहीं देते हैं, तो उसके लिए भी खरपतवार नियंत्रण अगर हम करें और उसके लिए दवा का छिड़काव करें तो उससे भी उत्पादन जो है वो हमारा कम से कम 20-30% जो है वो बढ़ जाता।
1: शिप्रा यादव जी, आप सहायक प्राध्यापक हैं शस्य विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में, आप हमारे पंचन के बीच में आयो और इस क्षेत्र के लिए धान की उन्नत प्रजातियां और उनकी विशेषताएं, यह विषय पर आप इतनी बढ़िया जानकारी दी हो, यके लिए आपका हम पंचन की तरफ से आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल, देखा ये तो रही डॉक्टर शिप्रा यादव और इनसे बतवानी अपने सरस्वती पाठक बहनी, लेकिन एक बात आपका बताई ना, ये क्षेत्र के लिए धान के जो उन्नत किस्म है प्राइवेट सरकारी सब बताई, यह लिए अपने पंच भैया का अवक विशेषता बताएं कि खासियत का है, कहाँ सिंचित क्षेत्र है, कहाँ असिंचित क्षेत्र है, आपके लगे बेचकता है कि खाकता है, छोटकी मंसूरी से लेके सामा मंसूरी तक, सरजू बावन सबके नाव लीन, लेकिन आपका एक का जरूरत यह है कि उसका समझी जो न अपनी तय जरूरत हुए वही क्या करी। एक बात हो, स्कूल खुले वाला है तो बेटियों के स्कूले भेजी, बेटो बेटी हम कोनो अंतर न करी, कैसे जैसे रत्नेश द्विवेदी उनके साथी बताता है बिल्कुल ऐसे।

बिल्कुल देखा ये तो रतेश द्विवेदी उनके साथ ही एक बात हमें याद आई ना, देखा बात याद है होते, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, अजाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। आपको एक कहानी याद हुई ना कि एक लड़किया घरे जात रहा आसरफी होके महतारी ओकरे वही कोटे में नीचे बांध दे रही, रास्ता में डाकू मिला, कहीं बताओ तुम्हारे को झारा लीन कुछ ना मिला, कहीं बताओ तुम्हारे पास कुछ है, कहीं हाँ एक असरफिया है, कहीं तुम्हें पता ना हम ले लेवे, कहीं हमारा अम्मा कहे आए कि सच बोले, वो इतना खुश भई कि वही दिन से डकैती छोड़ के वो न सच बोले लागे, अपने सब किताबें पढ़ते रहे, तो ऐसे सच के बड़ी महत्ता होते है, तो सच अपने सबका बोले चाहिए। आज मौसम की जानकारी जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से मौसम विज्ञान विभाग से अपने सबका मिला है वो आपका बता दी, कैसे कहानी तो हम सुनावा कर वैसे। तापमान अधिकतम रहा 40 डिग्री जो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा रहा, न्यूनतम 28.5 डिग्री यह सामान्य से 1.5 डिग्री ज़्यादा रहा, आर्द्रता अधिकतम रही 79% और न्यूनतम रही 48%, हवा की गति 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा रही और दिशा के उत्तरी पश्चिमी रही। आने वाले 24 घंटे के बारे में अनुमान है ना, हल्का बादल छावा रही, वर्षा न हो के संभावना है। इतरा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम विज्ञान विभाग से जो आज हमें मौसम का जानकारी मिली रही, लेकिन आपका बताइए अयोध्या मंडी से, अयोध्या से जो अब आज हमें मंडी के भाव मिला है वह आप जान लें, चावल रहा 3090 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ 2570 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का

0: 2370 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द काली 9300 रुपये प्रति क्विंटल, चना देसी 6450 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 7200 रुपये प्रति क्विंटल, अरहर दाल 10950 रुपये प्रति क्विंटल, आलू 880 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1400 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 2500 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन 7150 रुपये प्रति क्विंटल, तरोई 1400 रुपये प्रति क्विंटल, खीरा 1800 रुपये प्रति क्विंटल, बैंगन 2000 रुपये प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 3000 रुपये प्रति क्विंटल, कद्दू 900 रुपये प्रति क्विंटल, अदरक 9100 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 3600 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 1650 रुपये प्रति क्विंटल, लौकी 1400 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 1600 रुपये प्रति क्विंटल, केला पका 2850 रुपये प्रति क्विंटल, नींबू 5800 रुपये प्रति क्विंटल, पपीता 2800 रुपये प्रति क्विंटल, सेब 12250 रुपये प्रति क्विंटल, अनार 7300 रुपये प्रति क्विंटल, आम 3800 रुपये प्रति क्विंटल, गुड़ 5200 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी के भाव रहा 4125 रुपये प्रति क्विंटल। ये तो रहा अयोध्या मंडी, अयोध्या से आज हमें जोन ये बाजार भाव मिला रहा। लेकिन देखा पंच, आपन आज मौसमों जानिए, बाजार के भाव जानिए और काल आपका बताइए, काल जो कार्यक्रम हुए ना काला शनिचर, तो काल रहे किसान बाड़ी और जो सबसे बड़ी बात किसान करे तो काल रहे किसान सम्मान निधि, सबके खाता में आए, अपन सबके चेहरा मुस्कुराए, मोज फटकार के फिर खेत की तैयारी कीजिए, बेरन डाराजे और खूब बढ़िया से अपन धान के पैदावार कीजिए। लेकिन फिर कहियो यही कार्यक्रम में नीक बात बत कहीं के साथ फिर मिलबे, तब तक की तय हम यानी रामू का दी अनुमति, जय हिंद।
1: रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा, डॉलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते,
5: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
4: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
5: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
4: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
5: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
4: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
6: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के अध्यय केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन, 9:15 से कार्यक्रम महफिल गजल और 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हमारी कल की प्रसारण सभा में सुबह 7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण और 7:30 से कार्यक्रम होगा अमृत कलश। 8:15 से कार्यक्रम सुर संगम, जबकि दैनिक कार्यक्रम प्रणाम

0: आप सुन सकेंगे 8:30 से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विश्व शरणार्थी दिवस पर आज की बात के तहत चर्चा, दिनेश भारती की लिखी झलकी तमाशा, प्रस्तुति होगी दुर्गा मेहरोत्रा की। 9:00 से कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, 9:30 से कार्यक्रम बातें आसपास की और 12:30 से अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे। दोपहर 1:00 से कार्यक्रम सजीव फोनिन का होगा हेलो अयोध्या। दोपहर 1:30 से कार्यक्रम होगा कुछ तुमने कहा। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि और दोपहर 2:30 से महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, जिसमें आप सुनेंगे सजीव फोनिन कार्यक्रम हेलो सहेली। विषय है कितना समय देती हैं अपने दैनिक जीवन में योग को। 3:55 से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम किसान की 23वीं किस्त के हस्तांतरण का आंखों देखा हाल। कार्यक्रम युवाणी का समय होगा शाम 5:00। विश्व शरणार्थी दिवस पर होगी चर्चा, हमारी धरोहर में खजुराहो के स्मारक समूह के बारे में जानेंगे। अविरल श्रीवास्तव की वार्ता सुनेंगे, विषय है डिजिटल तकनीक और योग। आर्थिक जगत में जानेंगे फ्लोटिंग डेट्रेस्ट रेट पर। शाम 5:30 से कार्यक्रम लोक संगीत, शाम 6:10 से फिल्म संगीत शाम सुहानी। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गोजेश्वर गांव के 6:30 से और 6:45 से कार्यक्रम होगा किसानवाड़ी। खरीफ लतादार सब्जियों की खेती विषय पर होगी चर्चा, सहायक प्राध्यापक सब्जी विज्ञान विभाग कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज डॉक्टर राम सुमन मिश्र की भेंटवार्ता आप सुनेंगे। खरीफ में औषधीय पौधों की नर्सरी की उन्नत विधि, भेंट करता है राम प्रकाश पांडे। बाजार भाव और मौसम का हाल होगा ही। 7:30 से पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत प्रकृति की बात आप सुनेंगे आकाशवाणी के साथ का 6वां एपिसोड। 7:45 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, 8:00 से विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत सुनेंगे। 8:15 से कार्यक्रम एक ही कलाकार अभिनेत्री होगी नूतन। 9:15 से कार्यक्रम महफिले गजल और सजीव फोन इन कार्यक्रम 9:30 से हेलो अयोध्या आप सुनेंगे। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण, कहा युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एसआईटी की जांच सामने आएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात, कहा आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल, वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। यह युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाली

0: युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
2: आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य ने भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
1: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है, एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
1: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट ओढ़ियार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
3: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
1: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंच

0: जाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे सफल बताया। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, वियतनाम और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स बैठक की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही। इस दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एमएसएमई की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। बैठक में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेन चौधरी भी उपस्थित रहे। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच से सामने आएगा मंदिर चढ़वा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स

0: 1978 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह आवाज़ें लता मंगेशकर की फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, किशोर कुमार की आवाज और फिल्म का नाम ब्लैकमेल।

लीजिए, इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए सईद राही का कलाम, गायक स्वर राजकुमार रिजवी का।

0: से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंद्रधनुष के तहत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंद्रधनुष के तहत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए झलकी पुरातत्व के तत्व। लेखिका है नाज़नीन और निर्देशन है चंद्र प्रभा भटनागर का।
1: दुकान लग गई?
2: हाँ दुकान तो लगा दी मैंने। तू चाय लाया?
1: हाँ उस्ताद।
2: अरे तो देना।
1: गर्म है।
3: बड़ी फर्स्ट क्लास चाय बनवा कर लाया हूँ।
4: अबे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या सवाल?
2: अरे मुंशी जी आइए आइए।
4: क्या? अबे ये क्या है साहब?
1: कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही
4: ऐसे ही। अबे आधा फुटपाथ घेर रखा है और कहता कुछ नहीं। अब ये कैसा खटरा फैला रखा? ये क्या?
1: दरअसल दरअसल हम लोग पुराना माल बेच रहे हैं।
4: पुराना माल समझे आप बेचे।
2: बात ये है कि ये तो बात को हमेशा घुमा फिरा कर बोलता है। वैसे हम लोग डेकोरेशन पीसेस बेच रहे हैं।
4: डेकोरेशन? अबे ये क्या होता है?
1: डेकोरेशन पीसेस यानी सजावट के टुकड़े।
5: अबे तुम कुछ देर अपनी चोंच बंद रखो,
1: ठीक है?
2: मुंशी जी ये चीजें ड्राइंग रूम वगैरह में सजाने के काम आते हैं।
4: अच्छा तो बेटा तू क्या मुझे नया समझता है? अबे 24 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, 24 साल से। अरे लोग कैलेंडर घर पे सजाते या ये कबाड़ है?
2: कबाड़? क्या कह रहे हो मुंशी जी? अरे भाई ये पुराने जमाने की अनमोल चीजें हैं।
4: चल चल अच्छा अनमोल ही सही है, मगर कौन रखेगा अपने वो क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में?
2: अब लीजिए। अरे अमीर लोग और कौन है? अरे दूसरों पर रब मारने के लिए ये लोग इन्हें अपने घर में रखते हैं भाई,
1: ताकि सोसाइटी की नाक ऊंची रहे।
2: अब आप इस घड़े को देखिए, देख रहे हैं ना?
4: पुराना है
2: जी। हाँ देखने में मामूली है, मगर हजारों साल पुराना है।
4: क्या कहा, हजारों साल?
2: जी हाँ, मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकला था।
4: ये क्या?
1: और इस संदूक को पहचानते हैं?
4: कौन था?
1: इससे वास्को डी गामा पुर्तगाल से अपने साथ लाया था।
4: अच्छा अच्छा सुन
2: जी,
4: बहुत बुकरानी छाट चुके हैं आप, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ,
2: सीधे हो जाओ,
4: ठीक कर दूंगा।
2: हाँ
4: ये डंडा देखा है? अबे ये डंडा देखा है? ये चंगेज खां का है, चंगेज खां का, जिससे उसने बड़े बड़ों को सीधा कर दिया है। लेकिन अब

0: को सीधा कर दूंगा। हाँ बता देता हूँ
1: मुंशी जी। ये वाकई चंगेज खान का डंडा है।
2: ऐसा कीजिए मुंशी जी,
0: क्या
2: ये डंडा हम लोगों को दे दीजिए।
1: जी हम इसे अच्छे दामों में बेच देंगे।
0: मैं कहता हूँ
2: जी उठाओ,
0: ये उठाओ उम्बक तुम्बक उठाओ यहाँ से। अरे सरकार ने फुटपाथ लोगों को चलने के लिए बनाया है, न कि एक कबाड़ फैलाने के लिए। मैं कहता हूँ चलो कम हो यहाँ, कम हो जाओ, कम हो जाओ।
2: मैं कहता हूँ देखिए नहीं हमको, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे।
0: अबे खाल में रह, खाल में बहुत चबड़ चबड़ न कर। नेतागिरी खाली ना तो एक ही ढंडे में बेजा खोपड़ी से निकाल कर वो पार्क में वहाँ भेज दूंगा।
3: जाने दीजिए दारोगा जी, बच्चा है अभी।
0: बेटा मक्खन लगा रहा है, दारोगा कहकर मेरा ओहदा बढ़ा रहा। अबे तू क्या समझता, अबे क्या समझता है, तेरे इतना कहने में मैं पसी जाऊंगा।
3: अरे दारोगा, दारोगा क्या, आप तो हमारे लिए थानेदार से भी बढ़कर है। क्या चले
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हमारी सरकार है, माई बाप है।
0: बात बात बात बकवास बंद, ज्यादा जवानी मक्खन बाजी नहीं चाहिए। कुछ वो
3: ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो
4: किसी को समझा देना।
3: बिल्कुल
4: मुझसे एक ढंग से जरा बात किया करें।
3: जी हाँ बिल्कुल। और क्या मैं कहता हूँ तू आदमी है या शामियाने का बाप है? अबे क्या जरूरत थी उसे आई थी यार?
2: क्या बताए क्या बताए, उसने उसने कानून बघारा तो मुझे गुस्सा आ गया।
3: अबे वो पुलिस वाला है, वो तो कानून की बात करेगा ही।
2: भूल हो गई, अब से ऐसी पंगे बाजी से दूर।
3: शाबाश, तरक्की करोगे आगे चलकर बेटा, अगर मेरी बात मानोगे।
2: ये समस्या तो हल हो गई, अब समस्या है ग्राहकों की भीड़ जुटाने की।
3: चेले वो भी हल हो जाएगी, बस थोड़ी बतौलेबाजी करनी पड़ेगी।
2: बतौलेबाजी?
3: अब हाँ, भीड़ इकट्ठा करने के लिए पहले कुछ अलूल जलूल किससे कहानियां सुनाना पड़ता है ना, क्या समझे?
2: समझ गया समझ गया। और जब भीड़ जमा हो जाए तो असली धंधे पर आ जाओ।
3: अबे चेले हो जा तैयार है। तो मेहरबान अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दस मल्लुका कह गए सबसे ज्यादा। अरे जिसको काला कई पहर वो जिए, और जुल्फ नागिन का डसा मांग कर पानी पिए। तो जाने वाले देख ले तू अपना फेर कर, अरे राह में हम भी खड़े हैं रास्ते को फेर कर। हाँ तो मेहरबान साहिबान कद्रदान लगा कर सुनिए ध्यान। कहते हैं कि किसी जमाने में थे एक हकीम लुकमान, जिनकी थी एक बोलती हुई दवाओं की दुकान। लेकिन मेहरबान ना तो अब रहे हकीम लुकमान और न रही उनकी वो बोलती हुई दुकान। ए लड़के बैठ जाओ। मगर मेहरबान कदरदान, आपके इस हसीन शहर में खुल गई अनमोल चीजों की एक बेहतरीन दुकान।
2: क्या कह रहे हो, इस कबाड़ को अनमोल बता रहे हो?
3: अभी चीले तू है अभी बच्चा, अकल का है कच्चा। तू अपनी चोंच बंद रख। अबे जिसे तू कबाड़ कह रहा है वो है बहुत कीमती और नायाब।
2: अबे चराग लेकर ढूंढने से भी नहीं होगा कामयाब।
5: अरे कुछ बताओ तो सही, आखिर ये है क्या?
3: साहिबान इस पर गौर फरमाइए, देखने में है ये मिट्टी का ढेला, मगर इसमें छिपी है इतिहास की तीन जंगे। जी हाँ, ये पानीपत के मैदान की मिट्टी है मेहरबान। इसकी सुर्ख रंगत इस बात का सबूत है कि इस पर न जाने कितने सूरमाओं ने अपना लहू बहाया।
5: ऐसी मिट्टी लखनऊ में और लगे की दुकान के पास जाओ, मिट्टी को बोलो, अरे पीक से लाल ऐसी मिट्टी मिल जाएगी।
3: और साहिबान साहिबान जरा इस पैजामे पे निगाह डालिए।
5: पैजामा?
3: ये वही पैजामा है जिसे महामूर्ख शेख चिल्ली पहनते थे।
2: ये पैजामा छोड़ो, इस प्याले का इतिहास तो बताओ।

0: भी बताता हूँ। चिले
1: हाँ तो साहिबान, ये देखिए ये प्याला है, ये देख रहे हैं ना,
2: देख रहा
1: हूँ, है तो मामूली मगर है खूनी।
2: खूनी?
1: जी हाँ, इसी प्याले में मशहूर फिलोसफर सुकरात को जहर दिया गया
3: था।
4: नखास्ते खरीदे हुए गूदड़ और
1: कहा। सुनिए तो साहिबान, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। मैं मेहरबान कदरदान
5: तेरे सारे चले गए, पल्ले का 2 रुपए भी पुलिस वाला ले गया। अब क्या होगा उस्ताद?
1: घबरा मत चले,
0: वो देख अभी अंदर देख उधर,
5: हीरो की कद्र करने वाला जौहरी आ रहा है।
6: उस्ताद देखने में तो नवाब नजर आ रहा है।
0: अब बेटे अपना तजुर्बा कह रहा है कि ये जरूर कुछ ना कुछ खरीदेगा।
6: कुछ भी हो उस्ताद इसे गिरा लो, बिल्कुल जानने न पाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
5: आइए आइए आइए हुजूर, आना मर्दे
7: आना मर्दे आना मर्दे। भाई क्या बेच रहे हो ये?
0: किबला एक से एक नायाब चीजें हैं, ये देखिए
7: माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में तो।
5: अरे हजूर इनके रूप रंग पर मत जाइए,
0: सबकी सब ऐतिहासिक यानी कि तारीखी हैसियत रखती है।
7: फरमाया तारीखी हैसियत?
0: जी हाँ जी हाँ, जैसे कि हुजूर अब ये देखिए ये पर्दा, मुलाजा फरमाइए मुलाजा फरमाइए, अपने वक्त की मशहूर तबायफ उमराव जान के उस कमरे का है जहाँ वो मुजरा किया करती थी।
7: जान? है, क्या पूछते हो हाले दिले जार है अदा, आवाजगी में हमने जमाने की सैर की।
4: और बन्ना परवर, ये रही आमों की गुठलियाँ।
7: आमों की गुठलियाँ?
0: गुठलियाँ हुजूर,
7: क्या ये भी तारीखी हैसियत रखती है?
0: जी जी हुजूर, अरे इन्हें नहीं जानते आप? इन्हें चचा गालिब ने चूस चूस कर फेंका था।
7: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, भाई मिर्जा गालिब आमों को तो बड़े शौकीन थे।
4: और हुजूर इस चिराग को देखिए,
7: लगता है ये अलाउद्दीन का चिराग है।
0: बजा फरमाया हुजूर, ये वही चिराग है।
7: अरे तो मियाँ जरा घिस कर जिनको बुलाइए तो।
4: हुजूर गुस्ताखी माफ हो, जिन तो ना आ सकेगा।
7: क्यों भाई क्यों?
0: क्या है नवाब साहब कि जिन ने इस चिराग को छोड़कर 10 किलोवाट के बल्ब में बसेरा कर लिया है?
7: अच्छा अच्छा, वो क्या चीज है?
4: वो पानी भरने वाली मशक है।
7: माशाल्लाह भाई, इसको तारीख की किस अजीब हस्ती ने इस्तेमाल किया था?
0: लीजिए, अरे आप नहीं जानते हो तो ये मशक उस भिष्टी की है जिसने एक बार मौल बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी। हुजूर
7: याद आया हाँ। हुमायूं ने खुश होकर उसे एक दिन के लिए बादशाह भी तो बना दिया।
4: जी हाँ, जी हाँ। बादशाह बनते ही उसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए।
7: माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई मुझे तो ये मशक बहुत पसंद आई। इस नायाब शय को मैं अपने गरीब खाने की जीनत बनाऊंगा।
4: हुजूर हुजूर,
7: भाई क्या कीमत है इसकी?
0: अब आपसे मोल भाव क्या करना हुजूर, सिर्फ 50 रुपए इनायत फरमाइए।
7: अमां 50 रुपए? बस इतनी नायाब चीज की इतनी कम कीमत? ये लीजिए थैली संभाल।
0: शुक्रिया,
7: 50 से भी ज्यादा की रकम है।
0: शुक्रिया हुजूर शुक्रिया।
7: अच्छा भाई तो मैं चलता
0: हूँ,
7: खुदा हाफिज।
1: अबे देखा चेले, मैं न कहता था कि हीरे की कद्र जौहरी ही जानता है।
4: सही कह रहे हो उस्ताद,
0: पूरी थैली ही थमा गया। काफी भारी है, माल भी बहुत होगा।
6: उस्ताद मैं खोल कर तो देखो।
1: हाँ अभी खोलता हूँ खोलता हूँ।

0: येलो, अरे
1: ये क्या चमड़े के टुकड़े?
2: चमड़े के टुकड़े नहीं उस्ताद, मुझे तो लगता है ये चमड़े के सिक्के हैं।
1: क्या चमड़े के सिक्के?
2: उसी भिस्ती के दौर के सिक्के।
1: अबे मर गए।

तत्व के तत्व। अभी आप सुन रहे थे नाज़रीन की लिखी ये झलकी, निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का था। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत गुंजन। आप जानते हैं हम अक्सर किसी पुरानी कड़वाहट या धोखे को मन में दबा कर रखते हैं। हालिया शोध बताते हैं कि यह मानसिक बोझ शरीर को अंदर ही अंदर बीमार कर देता है। यानी अध्ययन के अनुसार मन में लंबे समय तक नाराजगी रखे रहना शरीर में तनाव बढ़ा देता है, जिससे गंभीर रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मन को खुश रखें, प्रसन्न रहें, हमेशा आनंदित रहें।

श्रोताओं, आप जानते हैं जब हम पुरानी कड़वाहट को यानी पुरानी खराब बातों को याद करते हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मस्तिष्क का अलार्म सेंटर शरीर को लगातार सर्वाइवल मोड में रखता है जिससे रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर होने लगती है। लंबे समय तक यह स्थिति अगर बनी रहती है तो शरीर बीमार होने लगता है। इसलिए कुछ भूलना भी सीखिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो
2: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर।
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
5: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
6: नहीं अछूता हो
5: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ मन की बात, आकाशवाणी और

0: दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
1: कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। श्रोताओं एक आवश्यक सूचना सुनिए, दिनांक 22 जून 2026 दिन सोमवार शाम 5:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में चर्चा का विषय है गर्भावस्था एवं प्रसोत्तर से जुड़ी सामान्य समस्याएं और समाधान। इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा पांडे। इनसे बातचीत करने के लिए आपको डायल करना होगा आकाशवाणी अयोध्या का फोन नंबर 7376804090। समय एक बार फिर से सुन लें, 22 जून 2026 दिन सोमवार समय शाम 5:30 से। श्रोताओं कार्यक्रम गीत गुंजन में आपके लिए अगला गीत आए उसके पहले आपको फिर से एक बात जो हम कहना चाह रहे हैं, नाराजगी की बातें। जी आप जानते हैं क्षमा करने का मतलब किसी के गलत काम को सही ठहराना या उससे दोबारा रिश्ता जोड़ना नहीं होता है, बल्कि यह खुद की भलाई के लिए उठाया गया कदम होता है। आप अपनी दबी हुई नाराजगी और दर्द को बिना किसी के शिकायत के स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद को दोष देने के बजाय एक दोस्त की तरह खुद की देखभाल करने लगते हैं। और इन सबसे अगर आप बार बार परेशान हैं तो किसी भरोसेमंद दोस्त से अपनी समस्याएं शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह आपका मन शांत होगा, हल्का होगा।

श्रोताओं, एक कहानी है छोटी सी। एक गांव में एक मेहनती युवक रहता था। उसके खेत के किनारे एक विशाल पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर इतना बड़ा था कि कुछ लोगों के द्वारा मिलकर उसे हिलाना संभव नहीं था। युवक ने उस पत्थर को तोड़ने का निश्चय किया। लोगों का मानना था कि उसे तोड़ना असंभव है। युवक हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, हथौड़ा उठाता और पत्थर पर प्रहार करना शुरू कर देता। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। गांव वाले उसे देखते और हंसते। किसी ने कहा, इतनी मेहनत बेकार है। किसी ने सलाह दी, समय बर्बाद मत करो, यह पत्थर नहीं टूटेगा। लेकिन युवक ने हार नहीं मानी। वह रोज यही काम करता। 20 दिन बाद भी कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। 50वीं चोट, 60वीं चोट, आदमी चोट पर चोट कर रहा था, पत्थर पर दरार तक नहीं पड़ी। एक दिन उसने लगभग 100 बार के बाद हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से चोट की। इस बार पत्थर टूट गया। गांव वाले दौड़े आए। सबने कहा, वाह, इस चोट ने कमाल कर दिया। युवक मुस्कुराया और बोला, नहीं, पत्थर केवल आखिरी चोट से नहीं टूटा। अगर उससे पहले की 100 चोटें ना होती तो यह प्रहार बेअसर होता। आप समझ रहे हैं जी। बस बदलने की कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं होगा, पर कुछ बार के बाद जरूर होगा। बदलने की कोशिश करिए खुद को। आप गलत का विरोध करिए, पर सामने वाले के प्रति नफरत की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।

श्रोताओं, फिलहाल इसी गीत के साथ दीजिए विवेकानंद को इस कार्यक्रम से इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या। और हाँ, 9:15 से कार्यक्रम होगा महफिले गजल, और 9:30 से आपका पसंदीदा कार्यक्रम सजीव फोन इन हेलो अयोध्या, नंबर 73-76-80-40-90 मिलाइएगा जरूर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे

0: उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: रिमेन्स अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ स्ट्रगल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले

0: 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़क का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country.
6: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
3: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा

त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chali had to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the

0: entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Hae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 9:15 पे है प्रस्तुत कार्यक्रम महफिले गजल।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िये माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
8: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
7: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
8: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
7: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा, बसंतपुर, कटेहरी, अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
9: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।
1: कार्यक्रम का आगाज सुनो निगम की आवाज में।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अबनियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलॉर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: कार्यक्रम महफिल गजल में आप सुनिए अभिजीत सावंत की आवाज में।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल-ए-कसम, एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष से बोल रहे हैं।

0: बजकर 30 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9592424 और 7800372222।
3: डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: जी हाँ श्रोताओं, मन के रेडियो को अब बजने दीजिए, क्योंकि सजीव फन एंड कार्यक्रम हेलो अयोध्या शुरू हो चुका है। आपको मिलाना है नंबर 7376 80 40 90 और फिर होगी हमारी और आपकी बातें लाइव फन एंड प्रोग्राम हेलो अयोध्या। जी हाँ, स्वीकार करिए विवेकानंद का प्यार भरा नमस्कार। कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं अश्विनी शुक्ला। फिलहाल आज का सफर जी हाँ शुरू हो चुका है, फोन भी आने लगे हैं, बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो जी
4: हेलो।
3: हाँ, हमें आपकी आवाज नहीं मिल रही है, कुछ आ रही है, बहुत धीमे धीमे आ रही है, एक मिनट। एक मिनट लाइन पर बने रहे हैं, आपकी आवाज हमें बहुत धीमे मिल रही है। हेलो
5: हेलो नमस्ते सर, मैं माही पांडे गुंडा से बात कर रही हूँ।
3: हाँ, स्वागत है आपका माही, क्या करते हो आप?
5: सर मैं तो पढ़ाई करती हूँ।
3: अच्छा, हमारी आपकी पहले बात

0: बात हुई है क्या कभी?
1: हाँ, एक बार हुई है।
0: कब कब कब?
1: नहीं थी।
0: अच्छा, तो माही क्या करते हो आप?
1: पढ़ाई
0: किस क्लास में हो?
1: नाइन्थ।
0: 9th। तो इस समय तो छुट्टी है, मौज हो रही होगी,
1: यस सर।
0: है ना?
1: बगल में दादी अभी भी शादी से आई हुई हूँ। सर,
0: ओहो, क्या बात है, तब तो बढ़िया। आज खाने को
1: आज
0: भी
1: से बात करने के लिए कहा, पहले जाकर सर से बात करूँ, उसके बाद फिर दोबारा जाऊँ शादी में।
0: आए, मतलब फोन करने के लिए आप आ गए घर, मतलब शादी
1: यस
0: वगैरह।
1: सर।
0: ओहो, क्या बात है। तो कैसा, मतलब मौसम कैसा है इस समय? पार्टी वाला है कि नहीं?
1: सर, मौसम तो पार्टी वाला है, पर गर्म इस टाइम बहुत है।
0: गर्मी भी है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सतर्क हो करके खाना पीना है।
1: यस सर।
0: तो माही, आज कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: सर, मुझे गाना सुनना है सचिन का, क्या कहना, और फिल्म का नाम है आंवला का ढाबरा।
0: अब ये तो बहुत जबरदस्त गाना पसंद किया है आपने। आबरा, आबरा का डाबरा।
1: यस सर।
0: अब ये देखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है कि ये हमारे पास है कि नहीं।
1: है, हमने सुना है। यस
0: सुना है? तो
1: सर।
0: देखते हैं कि ये आज हमारे पास है कि नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल है।
1: यस सर।
0: आबरा का डबरा देखते हैं। कौन सा गाना बताया?
1: सर, सचिन गेंग का क्या कहना।
0: क्या कहना,
1: यस
0: देखते हैं हम आपका अबरक डबरा है कि नहीं है। दिख तो नहीं रहा है मुझे। आबरा का डाबरा, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है शायद आज नहीं है।
1: सर, दूसरा बताओ।
0: दूसरा बताओ। यस,
1: बताओ सर।
0: हाँ, बताओ, बिल्कुल बताओ।
1: दीजिए, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी।
0: हाँ, ये बात तो कुछ समझ में आई, लेकिन ये क्यों, बगल में शादी वगैरह है पास में, इसलिए क्या?
1: सर, घर के बगल ही है। सर,
0: कितनी दूर पर?
1: 100 मीटर दूरी पर है। यस
0: बस।
1: सर।
0: हाँ, तब तो फिर इसका मतलब बहुत पास ही है।
1: यस सर।
0: तो ठीक है, अब ये वाला तो सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बगल का मामला है और उनको
1: यस
0: आपको
1: सर।
0: बधाई देनी होगी, उनको बताना
1: सर, आप
0: होगा।
1: भी आ जाइए हमारे घर पे।
0: अरे, कहाँ से आ पाएंगे, इस समय तो प्रोग्राम चल रहा है ना।
1: तो सर, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब।
0: तब जब तक हम पहुंचेंगे तब तक वहां भी सब कुछ खत्म हो जाएगा, समा।
1: नहीं, खत्म नहीं होगा, अभी
0: हाँ
1: वो बराती वाले नहीं आए हैं।
0: ठीक है, तो हम बाराती बन के चले आए हैं।
1: यस सर, आप बराती बन के आ जाइए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो जिनके घर पे शादी है उनका क्या होगा, उनसे कहेंगे कैसे कहाँ, तब फिर क्या बताऊंगा? न नाम पता, न पता, मोहल्ला कुछ नहीं, तब क्या
1: नहीं
0: होगा?
1: सर, हम तो पहचान ही लेंगे, नाम पता फिर बताने की जरूरत नहीं
0: नहीं,
1: पड़ेगी।
0: आप तो पहचान लोगे, लेकिन ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है किसी के यहाँ बिना बुलाए।
1: तो सर, आप बराती बन के आएंगे, सर आपसे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा।
0: नहीं, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, है
1: सर,
0: ना?
1: हम तो बुला रहे हैं।
0: नहीं, आप तो बुला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो और परिवार है उसके यहाँ नहीं, क्योंकि उसके यहाँ शादी है।
1: हमारे परिवार वाले गुस्सा नहीं करते हैं,
0: अरे, आपके
1: वो
0: परिवार
1: बोलते
0: वाले,
1: हैं जिसको भी बुलाना हो बुला लो।
0: क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। तो आपके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं, लेकिन बिना बुलाए घर बार जो जिनके घर पे प्रोग्राम है उनके नहीं, क्योंकि उनको पता है ना कि कितने लोगों को बुला रखा है, उन्होंने इतनी व्यवस्था कर
1: नहीं,
0: रखी
1: तो
0: है
1: उनको
0: खाने
1: क्या
0: का।
1: पता है हम कितने लोगों को इनवाइट कर
0: अरे,
1: रहे
0: उनको
1: हैं।
0: पता है कि कितने लोगों को इनवाइट किया है, कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से खाना पानी व्यवस्था होगी। नहीं
1: नहीं
0: जाना,
1: सर, हमारे यहाँ तो जो 100 लोगों को भेजना है, तो 110 का खाना करते
0: हाँ
1: हैं।
0: वो सही है, अच्छी बात है। आप क्या, जब होगा तो आएंगे पक्का, ठीक है?
1: यस सर।
0: ठीक है,
1: यस सर।
0: ठीक है, सुनो अपनी पसंद का गीत।
1: सर,

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। एक कॉल आ रही है। हेलो हेलो हेलो हेलो, कॉल लग गई है लेकिन बात नहीं आ रही है। हेलो शुभम, मिलाते रहिए 73 76 80 40 90 लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। कॉल आ गई। हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है और कहां से?
1: सुल्तान बोल रहा हूँ मसौदा से।
0: सुल्तान
1: क्या? सुल्तान मसौदा से।
0: हाँ हाँ, क्या करते हैं आप?
1: मसौदा अयोध्या।
0: क्या करते हैं आप?
1: हम अंडे की दुकान लगाते हैं सर।
0: अच्छा, तो मसौदा से प्रोग्राम सुनते हैं वहाँ?
1: हाँ, आपके प्रोग्राम सुनता हूँ मैं 30-35 साल से।
0: क्या बात है। तो कौन सा प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है
1: आपको? सब प्रोग्राम अच्छा लगता है। सुबह सुनता हूँ 9 से लेके 10:30 बजे तक। हेलो फरमाए, सुबह भी आता है?
0: हाँ सुबह भी आता है।
1: पहले जवानों के लिए आता था, वो तो बंद हो गया अब।
0: तो
1: और जो अभी शाम के आता है, लोग आते हैं पूछते हैं चले आप रेडियो रखते हो, हमको भी हमारे रेडियो का बचपन में शौक है।
0: बिल्कुल, वो तो आप जिस तरह बता रहे हैं इस तरह लग रहा है कि आप सुनते होंगे। तो आप अकेले प्रोग्राम सुनते हैं? आप अकेले प्रोग्राम सुनते हैं और भी लोग आपके साथ सुनते हैं?
1: मैं अभी दुकान वाले हैं, अगल बगल सब बैठे हैं।
0: अच्छा, सब लोग
1: मिलाओ जब तक साइड पकड़ लिए।
0: और क्या,
1: तो हिसाब से पकड़ लिया।
0: तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
1: देश प्रेमी सुना दो, मेरे देश प्रेमी हो।
0: देश प्रेमी का गीत, ठीक है।
1: हाँ, ये गाना पिछली बार भी सुना थे आपने, सुनाया था। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन का।
0: नहीं, हमें भी ये गाना बहुत अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात देश के ऊपर है, तो अच्छा तो है ही, है ना?
1: बहुत अच्छा।
0: तो कई बजे तक
1: दूसरी बार आपके कॉल मिले है?
0: अच्छा, दूसरी बार?
1: हाँ, एक बार और मिले थे 3 महीना पहले।
0: क्या बात है। अच्छा, एक चीज और बताओ, कितनी देर तक, कई बजे तक आप प्रोग्राम सुनते हैं, कितने बजे तक?
1: आपका रेडियो दिन भर चालू रहता है, आप 12 बजे तक का ही सुनेंगे फिर बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद सुबह 7:30 बजे चालू हो जाएगा, फिर 12 बजे सुनेंगे, फिर 12 बजे बाद चला जाता हूँ ड्यूटी सामान में लाने, फिर 3 बजे से खोल देता हूँ तो फिर

0: चलता रहता है 11 बजे तक।
1: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
0: धन्यवाद, नमस्ते।
1: नमस्ते। मिलाते रहिए फोन, नंबर वही है 73-76-80-40-90 और फिर होगी हमारी और आपकी बातें। लाइव फोन इन प्रोग्राम है। हेलो आयत्या। लालच

0: जी हाँ, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो क्योंकि भारत अपना है। फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सचिव फनिन। हेलो अयोध्या, आकाशवाणी अयोध्या से एक कॉल आ गई है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: आकाशवाणी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो,
1: आवाज जा रही?
0: जी जी बिल्कुल आ रही है। अपना बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए।
1: हम अयोध्या से बोल रहे हैं।
0: अयोध्या से? अपना नाम भी बताइए।
1: आशाराम, आशाराम।
0: अच्छा आशाराम जी, क्या करते हैं?
1: हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, इसके पहले भी आपकी कॉल कभी लगी है?
1: नहीं, पहली बार लगाए हैं। पहली बार में लग गया।
0: क्या बात है, पहली बार कॉल लगाया आपने और लग भी गई।
1: हाँ भाई, हमारा रेडियो चला रहा था तो गाना सुन रहा था, तो कह रहा लगाओ, हम लोग भी गाना सुने। बाबा भी है साथ में।
0: क्या बात है, तो सब लोग इसका

0: मतलब कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: हाँ, बाबा के साथ में सुनते हैं रेडियो।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं आप?
1: हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: किस क्लास में है?
1: ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का कोर्स किए हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपके घर में और सब लोग भी प्रोग्राम सुनते हैं?
1: नहीं, सब लोग नहीं सुनते, बाबा के साथ हम लोग सुनते हैं, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं ना।
0: अच्छा, मतलब बाबा सुनते हैं इस वजह से आप सब लोग सुनते हैं।
1: हाँ,
0: क्या बात है। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
1: तो बाबा का सुनना है गाना, वो नदिया के पार वाला सुनेंगे।
0: अच्छा, तो नदिया के पार का कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: जो है गुंजा वाला, ए गुंजा उस दिन तोरी सखिया, यही वाला गाना बाबा सुनेंगे।
0: कौन दिशा में लेके चली रे बटुया?
1: हाँ, यही वाला, यही वाला।
0: अच्छा, यही वाला, कौन दिशा में लेके चली रे। ठीक है, तो कितने समय से बाबा सुन रहे हैं प्रोग्राम?
1: बाबा हमारे बहुत पहले से सुन रहे हैं, हम लोग अभी चल नहीं पा रहे थे तब से सुन रहे हैं रेडियो।
0: ओ, तब तो बहुत समय से सुन रहे हैं फिर वो।
1: हाँ, जब से हम लोग का मतलब जानने लगे तब से उनको देख रहे हैं कि सुनते हैं गाना।
0: क्या बात है। बाबा की उम्र कितनी है?
1: बाबा की उम्र करीब 65+ है।
0: क्या बात है, ऊपर वाला उनको दीर्घायु करे और इसी तरह आकाशवाणी अध्याय सुनते रहे आप लोग भी। ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए। लाइव फोन इन प्रोग्राम, हेलो अयोध्या जी। हाँ, नंबर वही मिलाना है, 73-74-80-40-90। मिलाते रहिए।

0: लाइव फनी प्रोग्राम हेलो अयोध्या सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से कॉल आ गई है। हेलो
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहा है?
1: सर रजनीश चौरसिया नौबुक शहर लखनऊ से बात कर रहे हैं।
0: वाह क्या बात है रजनीश जी, आपने मतलब बात तो कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन आपने जो परिचय दिया वो बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बेहतर, और आज हमने आपके कार्यक्रम में सर एक महीने बाद कॉल लगाया है।
0: अरे ये तो और अच्छी बात है, कम से कम आप इस बात का ध्यान रखें। तो रजनीश जी मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है कि इसके पहले भी हुई है?
1: सर शायद मेरी आपसे
0: पहली बार बात हो रही है। यस मुझे भी ऐसा लगता है। क्या करते हैं आप?
1: सर हम टू व्हीलर के मैकेनिक हैं।
0: अच्छा, तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, दिन सुबह कई बजे पहुंच जाते हैं अपने शॉप पर?
1: सर ऑफिस हम 9:30 बजे पहुंच जाते हैं और शाम को 7 बजे तक घर आते हैं।
0: पूरे दिन भर मेहनत करते हैं?
1: जी सर।
0: क्या बात है, और फिर समय निकाल लेते हैं, मतलब हमें लगता है शायद दिन में नहीं लेकिन शाम को सुनते होंगे प्रोग्राम?
1: बिल्कुल, आपका ये अयोध्या कार्यक्रम हम रोजाना सुनते हैं लेकिन कॉल कभी कभी लगाते हैं सर।
0: सही है, बढ़िया है। तो आज कौन सी फिल्म का ये सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म है साजन और उसका बहुत ही खूबसूरत गाना है तुमसे मिलने की तमन्ना है, ये अलग सॉन्ग सुनवा दीजिए।
0: देख रहे हैं साजन फिल्म और तुमसे मिलने की तमन्ना है।
1: तमन्ना है जी सर।
0: ठीक है, तो आप अकेले प्रोग्राम सुनते हैं और भी लोग आपके साथ सुनते हैं?
1: जी सर।
0: आप अकेले प्रोग्राम सुनते हैं कि और भी लोग होते हैं घर परिवार?
1: जी सर, हम घर में सर हमारे पापा लोग रेडियो सुनते हैं लेकिन आपका ये जो चैनल है हम इसको न्यूज ऑन एयर पे सुन रहे हैं मोबाइल।
0: अच्छा, ऐप पर सुनते हैं आप?
1: जी सर।
0: ठीक है, बढ़िया है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
1: धन्यवाद सर,
0: स्वागत है। इसी तरह फोन करते रहिएगा, ठीक है? श्रोताओं आप भी हो सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा, करना कुछ नहीं है, नंबर वही है 7374804090। उठाइए फोन और फिर 7376 मतलब मिला डालिए, बात होगी हमारी आपकी।

लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अध्याय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्याय केंद्र से। इस समय ठीक 10 बजे हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आपसे फिर मिलते हैं, लेकिन मिलाना बंद मत करिएगा फोन। जी नंबर वही है 73-76-80-40-90, मिलाते रहिए।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
8: सुनत हिल सखी, सुनत हे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
9: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत हे। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
8: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
9: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
10: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
11: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
12: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
11: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
12: जी हाँ, और वो है योग।
11: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
12: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
11: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
12: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
11: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
10: योग करिए, निरोग रहिए।
13: लाइव फन एंड प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्यक्ष से और एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कॉल आ रही है। हेलो हेलो
14: हेलो,
13: हाँ जी, आपकी कॉल लग चुकी है, बताएं कहाँ से फोन कर रहे हैं
14: जी? अयोध्या से।
13: अयोध्या से अपना नाम बताइए।
14: सुरेंद्र कुमार।
13: सुरेंद्र जी क्या करते हैं?
14: मैं पेंटिंग का काम करता हूँ।
13: अच्छा, और पहली बार कॉल लगी है, किसके पहले भी आपकी कॉल लग चुकी है?
14: पहली बार, कोशिश तो कई बार की है लेकिन आज पहली बार लगी है।
13: वाह क्या बात है, तो कैसा लग रहा है आपको आज पहली बार आपकी कॉल?
14: बहुत अच्छा।
13: तो आप अकेले सुन रहे हैं और भी लोग हैं आपके साथ?
14: नहीं, हम दो लोग हैं ना, हमारी वाइफ भी है हमारे साथ।
13: क्या बात है, मतलब वो भी सुन रही है आपके साथ?
14: हाँ।
13: और आप हमसे बात कर रहे हैं तो किस चीज पे सुन रहे हैं इस समय, मतलब ट्रांजिस्टर रेडियो है या फिर?
14: हाँ, रेडियो।
13: तब तो ठीक है, तब तो आप हमसे बात करेंगे और वो अपना सुन लेंगे।

0: जी, तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे पहले ये बताइए।
1: धड़कन फिल्म का सुना दीजिए।
0: धड़कन का कौन सा गाना?
1: धड़कन का कौन सा गाना?
0: हाँ
1: तुम दिल की धड़कन में रहती हो।
0: अच्छा, कोई पीछे से बता रहा है आपको, है ना? तो हमें लग रहा है वही है जो आप जिनको बता रहे हैं वही साथ में है, वही बताई।
1: हाँ।
0: सही है, अच्छा है, कोई बात नहीं। तो कौन आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते हैं आप? कौन सा अच्छा लगता है सबसे अच्छा?
1: क्या?
0: कौन सा प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है आपको?
1: प्रोग्राम तो ये सब अच्छा लगता है क्योंकि समय नहीं मिलता है सुनने के लिए। काम को भी मिलता है।
0: हाँ, सही है, जब वक्त मिले तभी, काम छोड़ करके तो वैसे भी नहीं सुनना। तो वैसे आकाशवाणी को आप किसी भी समय सुन सकते हैं, काम करते रहिए, सुनते रहिए, है ना?
1: हाँ।
0: ठीक है, तो
1: सकते हैं, लेकिन वहाँ रेडियो लेके कहाँ जाएंगे?
0: हाँ, वही वही वही मैं कह रहा हूँ, काम के समय नहीं हो पाता है।
1: हाँ, काम के समय
0: हाँ नहीं हो पाता है। फिलहाल सुनते रहिए, इसी तरह प्रेम आकाशवाणी के प्रति ऐसे ही बनाए रहिए। ठीक है, तो हम आपकी पसंद का गीत प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
1: हाँ जी, चलिए
0: जी।

0: लाइव फन एंड प्रोग्राम में एक कॉल आ रही है जी। हेलो जी, स्वागत है आपका। कहाँ से फोन लगाए हैं? हेलो
1: नमस्ते।

0: सर
1: नमस्ते, कौन बोल रहा है और कहाँ से?
0: अयोध्या से ही सर,
1: अयोध्या से,
0: महबूबगंज।
1: अच्छा, तो अपना नाम भी बताइए।
0: नाम सर
1: आपकी आवाज हमें मिली नहीं, फिर से बताइए।
0: सत्येंद्र नाम है सर, सत्येंद्र।
1: अच्छा सत्येंद्र, तो सत्येंद्र जी क्या करते हैं?
0: जी सर
1: क्या करते हैं आप?
0: सर हम ठेकेदारी का काम करते हैं सर।
1: अच्छा, तो आज पहली बार कॉल लगी है कि इसके पहले भी आपकी कॉल लगी है?
0: पहली बार लगी है सर कॉल।
1: पहली बार, तो खुशी बहुत हो रही होगी, क्यों?
0: जी जी सर, बहुत खुशी हो रही है।
1: और मुझे लगता है आप जहाँ हैं वहाँ आपके साथी वगैरह भी हैं कुछ आसपास, कि घर पर हैं?
0: जी सर।
1: कहाँ हैं इस समय? घर पर ही हैं?
0: नहीं सर, हम तो रहने वाले सर इटावा के हैं।
1: अच्छा
0: जी सर, यहाँ पे जमीन सर काम चल रहा है, यहीं पे रहते हैं सर।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
0: सर हमारी काका से बात करिए, काका बताएंगे थोड़ा।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात कराइए।
2: हेलो सर।
1: हेलो जी, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
2: सुरेंद्र प्रताप सिंह।
1: अच्छा, तो सुरेंद्र जी आप साथ में ही इनके रहते हैं?
2: जी जी जी, हमारे साथ में है यही।
1: अच्छा, तो और समय निकाल करके प्रोग्राम सुन लिया आपने और आज फोन मिला दिया।
2: जी जी जी,
1: क्या बात है। तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
2: राम लखन का सुना दीजिए।
1: राम लखन का कौन सा सुनवा दें?
2: जी जी,
1: राम लखन
2: कोई भी, कोई भी।
1: अच्छा, हम देख रहे हैं राम लखन फिल्म। तो
2: जी
1: आप कोशिश पहले भी किए थे कभी कि नहीं फोन करने के लिए?
2: नहीं नहीं सर, कोशिश करते हैं लेकिन लगता नहीं है।
1: और वो तो बता रहे हैं सत्येंद्र जी कि आज उन्होंने कोशिश की और लग गया।
2: हाँ लग गया, तो वही चाव सा है, तभी लग गया।
1: वहां से इतनी दूर से आए हैं इसीलिए यहाँ पास में फोन लग गया।
2: जी जी,
1: क्या
2: जी,
1: बात है। ठीक है, तो राम लखन फिल्म का कोई भी गीत?
2: कोई भी।
1: ठीक है, तो हम आपकी पसंद पर एक गीत प्ले कर रहे हैं उसी फिल्म का, सुनिए।
2: जी जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार। श्रोताओं, आप भी हो सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा। जी क्या करना है, क्या करना है, करना क्या है, फोन उठाना है, मिलाना 73 76 80 40 90, फोन मिल जाएगा, घंटी बजेगी, फिर मैं यहाँ से कहूंगा हेलो, फिर प्रोग्राम शुरू। मिलाते रहिए फोन।

0: श्रोताओं, आप जानते हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम का ये सफर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 10:15 और 7 सेकंड हो चुके हैं, यानी ये घड़ी जो है वो टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक बढ़ रही है। कॉल आ गई, लेकिन बात करते हैं इनसे।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका। जी हेलो,
1: हेलो
0: हेलो
1: जी,
0: स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संजय बोल रहे हैं, खुर्दाबाद से।
0: क्या करते हैं? क्या करते हैं संजय जी?
1: सर खेती बाड़ी करते हैं सर।
0: और प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ जी, हम तो सुनते हैं फैजाबाद हेलो फरमाएगा।
0: तो सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा लगता है आपको?
1: सर हमको तो यही अच्छा लगता है सबसे अच्छा।
0: सबको बहुत अच्छा लगता है, सारे श्रोताओं को ना।
1: जी।
0: तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: सर हम कर्मा फिल्म का गाना सुनेंगे। सर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए।
0: अच्छा,
1: पर तो हमारा ये दोबारा फोन लगा है, एक बार और लगा था 2025 में, लास्ट में 27 तारीख को 12वें महीने में।
0: अच्छा, तो मतलब आपको ये अच्छी सी बात, मतलब पूरा आपको याद है कि आपका फोन कब लगा था?
1: हाँ जी, हमने भी यही गाना भी सुना था हमने।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। और कम से कम अच्छी बात ये है कि आप इतने दिन बाद लेकिन फिर फोन मिलाए हैं।
1: हाँ जी जी।
0: तो आप, मैं सभी श्रोताओं से यही पूछ रहा हूँ आज भी, तो आपसे भी यही पूछने जा रहा हूँ कि आप अकेले सुन रहे हैं कि और भी लोग आपके साथ सुन रहे हैं?
1: नहीं सर, हमारे भाई बहन भी है, का नाम से सब सच्चे हैं, सब सुन रहे हैं,
0: सब लोग, मतलब पूरा परिवार सुन रहा है।
1: क्या बात है, लड़की भी है सर।
0: क्या बात है, बिल्कुल अच्छी बात है ये। और इसी तरह आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते रहिए, आकाशवाणी अयोध्या के।
1: जी सर, जी सर, हमारा एक लड़का भी है लवकुश यादव।
0: बढ़िया, ठीक है। तो कर्मा फिल्म का गाना है वतन तेरे लिए।
1: जी यार, कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए सर।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद पर गीत प्ले कर दिया है मैंने, सुनिए।
1: जी जी, धन्यवाद सर।

0: जी हाँ, सजीव फुरिन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, एक कॉल आ रही है। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है और कहाँ से?
1: सर, मैं अनुराग सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम रूना तहसील यूपी जिला अम्बेडकर।
0: तो अनुराग जी, कहाँ, किस पर सुन रहे हैं प्रोग्राम आप? न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर या रेडियो ट्रांजिस्टर पर सुन रहे हैं?
1: नहीं सर, मैं तो मोबाइल से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, तो मोबाइल ऐप पर ना
1: जी?
0: मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं या मोबाइल में जो रेडियो होता है ऐप, उस पर सुन रहे हैं?
1: सुन रहा हूँ, और दूसरे फोन से हमने कॉल लगाया और तुरंत लग भी गया सर।
0: क्या बात है, तो पहली बार आपकी कॉल लगी कि इसके पहले भी लगी है?
1: नहीं सर, पहली बार लगाया और पहली बार लग गया।
0: अरे, लोग कहते हैं फोन मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, मिलता ही नहीं, और आप फोन मिला दिया और मिल भी गया।
1: जी जी जी जी, इस मामले में तो सर लग तो गया खराब।
0: क्या
1: मैं बहुत खुश
0: बढ़िया है। तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे अनुराग जी?
1: सर, मैं तो पुराना गीत देश प्रेमी का सुनना चाहूंगा, आप अपने प्रेम करो देश के लिए।
0: देश प्रेमी का तो अभी शायद गाना कुछ बजाया था हमने थोड़ी देर पहले।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ, देश प्रेमी का गाना अभी आज ही बजा।
1: आप अपने हिसाब से अपने पसंद का कुछ भी बजा दो।
0: अच्छा, ऐसी बात है, तो ठीक है, तो और बिल्कुल, तो हम सुना ही देंगे आपको। तो आप करते क्या है?
1: सर, मैं तो फार्मासिस्ट हूँ, अभी घर पे आया हूँ छुट्टी से।
0: तो इस समय छुट्टी पर है, कब तक है छुट्टी पर? हेलो,
1: फार्मा कम।
0: जी जी, हम ये पूछ रहे हैं कब तक है आप छुट्टी पर, अवकाश पर, कब तक है?
1: और रहना सर उसके बाद।
0: अच्छा, और काम कहाँ करते हैं?
1: जम्मू में।
0: जम्मू में, तो वहाँ सुनते हैं क्या आकाशवाणी के प्रोग्राम?
1: नहीं सर, सुन नहीं पाते हैं, पर आज पहली बार ही लगाया मैंने और पहली बार सुन भी रहा था। इसके पर जब मैं पढ़ता था स्कूल इंटरमीडिएट में, इस टाइम आप रेडियो होता था तो हम बहुत सुनते थे।
0: वाह, क्या बात है।
1: ऐसे मन किया कि आज लगाते हैं और इतनी किस्मत अच्छी है कि फोन लग गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी किस्मत निश्चित रूप से बहुत अच्छी है और आपसे बात भी हो गई, अच्छा है। फिर फोन मिलाइएगा, मिलाते रहिएगा, सुनिएगा आकाशवाणी।
1: धन्यवाद।

0: जी हाँ, सफर तो लगभग पूरा हो रहा है लेकिन एक कॉल आ रही है तो इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका। कौन बोल रहा है और कहाँ से?
1: नमस्ते साहब जी, मैं कैंट से बोल रहा हूँ, रमा शंकर कुमार।
0: अच्छा, तो रमा शंकर जी क्या करते हैं?
1: सर 2023 से मैं लगाता हूँ सर, फोन लग ही नहीं रहा था, आज लग गया। तो मैं कर्मा फिल्म में गाना सुनने वाला था मगर पहले ही रिलीज हो गया।
0: हाँ बिल्कुल, पहले ही एक श्रोता सुन चुके हैं इसको।
1: मैं एमएस में हूँ सर।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, बढ़िया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हम सेमी पुल का ऑपरेटर है सर।
0: वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो
1: बहुत दिन से सुन रहे सर, हम तो दिल्ली में थे तो सर वहाँ सुन रहे थे। मैं 83-84 से सुन रहा हूँ रेडियो पर, मेरा जीजा जी का रेडियो था, ऊपर तो पढ़ते थे उस समय में।
0: तो अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं?
1: हम सब बक्सर बिहार के।
0: ओ, वहाँ के हैं और यहाँ इस समय ड्यूटी पर हैं आप?
1: हाँ सर, यहाँ हमारा लास्ट है यहाँ।
0: क्या बात है, तो इस समय तो देशभक्ति गीत हम प्ले कर रहे थे, मैं सोच रहा हूँ वही चल रही थे आपके लिए। जो अभी बज रहा था गीत वही चलने ही देते हैं।
1: बहुत अच्छा चल रहा प्रोग्राम सर, मैं तो सखी सहेली हेलो मैं सब भी सुनता हूँ सर, नाटक भी सुनता हूँ।
0: क्या बात है,
1: धारावाहिक भी आता है 3-4 बजे, सब सुनता हूँ मैं बैठे बैठे।
0: वाह, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, इसी तरह सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
1: सुना दीजिए कोई वही देशभक्ति वाला।
0: तो यही मैं कह रहा था कि देशभक्ति का गीत जो अभी चल रहा था,
1: हाँ,
0: वही हम जो रोके हुए हैं उसी पे हम प्ले कर दे रहे हैं आपके लिए, क्योंकि वो भी देशभक्ति।
1: नमस्ते।

कहते हैं मेरा। श्रोताओं, फिलहाल आज का सफर हुआ पूरा। दीजिए विवेकानंद को इस कार्यक्रम से इजाजत। और हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। कंट्रोल रूम से आज हमारे साथ थे अश्वनी शुक्ला। फिलहाल आज का नमस्कार।

0: लोक रंग कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 और 8 सेकंड हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक

अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड पर। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचार क्लिक कीजिए, बस थोड़ा सा इंतजार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका।